MBC Radio, your music companion.

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त किए जाने के बाद अब नए बोर्ड का गठन किया गया है। जीगवांग जिल्बे अशु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि जैन चिलम और वीरेंद्र मुसाय को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। इस बात का जायजा कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया। और मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार 2 अक्टूबर को माहोवाकुआ जलाशय में पानी का स्तर घटकर 36.6% रह गया। पानी के भंडार में लगातार हो रही कमी और मौसम की सूखा रहने के अनुमान को देखते हुए मंत्रिमंडल ने पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनाए जाने की भी जानकारी दी। इस कमेटी की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करेंगे और इसका काम उपलब्ध पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए ज़रूरी और तत्काल कदमों पर विचार करना होगा। मॉरिशस में सितंबर से कॉन्सेंट्रिक्स की गतिविधियां बंद होने के मामले में अब समाधान निकल आया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी के करीब 300 कर्मचारियों को हर साल की सेवा के बदले 2 महीने का वेतन, साथ ही नोटिस के तौर पर 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये प्रस्ताव कल 2 अक्टूबर को श्रम मंत्री की देखरेख में कॉन्सेंट्रिक्स और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई दूसरी सुलह और मध्यस्थता बैठक के बाद सामने आया। विदेश में फ्लाई दुबई विमान के पायलट पर हमले के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर जांच में इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की पुष्टि होती है तो अमेरिका बहुत घातक जवाबी कार्रवाई करेगा। और अंत में मौसम का हाल। दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है, साथ ही मस्करीन के दक्षिण में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान, आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दिन के दौरान और दोपहर बाद के समय देश के दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर रह रहकर वर्षा होगी और बाद में अन्य जगहों पर भी वर्षा हो सकती है। रात्रि के समय देश के दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी और बाद में मौसम में सुधार आएगा। तापमान, सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परिसमुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है, खासकर दक्षिणी लगूनों में, तो समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज 5:50 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 6:06 पर होगा।
2: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़रत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबिनाज जान अली। महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस पुरनूर नशरियात का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करने जा रहे हैं। सलफ़ सालहीन समझते थे कि तदब्बुर कुरान का सबसे अजीम तरीका ये है कि हर आयत में अल्लाह को तलाश किया जाए। यहाँ अल्लाह की रहमत कहाँ है, इसकी हिकमत कहाँ है, उसका लुत्फ कहाँ है, उसका अदल कहाँ है, उसकी कुव्वत कहाँ है, उसका करम कहाँ है।

तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस हाल में मर जाए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से बरी हो तो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को चार चीज़ें नसीब हो गईं उसे दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ मिल गईं। पहला शुक्र करने वाला दिल, दूसरा ज़िक्र करने वाली ज़बान, तीसरा मुशक्क़तों पर सब्र करने वाला बदन, चौथा ऐसी बीवी जो अपनी इज़्ज़त, पाक दामनी और शोहर के माल में खयानत

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नम से निकालो। बहवाला सही अल बुखारी।

दारमी शरीफ की रिवायत है, जन्नत में दूध का एक समंदर होगा और शहद का एक समंदर होगा और शराब का एक समंदर होगा जिसमें से नहरें जारी होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन

जन्नत में दरवाज़े पर मैं आऊँगा और दरवाज़ा खुलवाऊँगा। जन्नत का दरबान पूछेगा, आप कौन हैं? मैं जवाब दूँगा, मुहम्मद। वो कहेगा, मुझे आप ही के बारे में हुक्म मिला था कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा न खोलूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहवाला सही।

హరినామము హరినామము హరినామము హరినామము పాడుతూ పలుకుతూ

रूपम केवलम साधारण निद्र कादु सृष्टि स्थिति लयनु पर्यवेक्षिंचे भगवंतुनि योग निद्रा

माय बाप गणराया माय बाप गणराया गायन तुझे कीर्ति माय बाप गणराया गायन तुझे की

0: मचाड़े मोटे तो पची सानू दर्द पड़े जारे तारी बूम आख नाक कान बदु थाए मारू सुन ढोलक ना ताले आरती ना टाने तारी मूरत ने लगाड़ी मैं कुम कुम तो
1: ने ई मानु कुमकुम जे पत्थर माए जीव भरी दे ललाटे लागे तो आयु वधारी दे ने जे मुंगा नहीं बोलता करे।

भक्ति में शक्ति। प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, हमारी संस्कृति में परंपराओं के साथ साथ त्योहार और व्रतों का भी बहुत अधिक महत्व है। इन व्रतों में अनेक ऐसे व्रत हैं जिनके पालन में कमी तो आई है, परंतु यह भी सच है कि आज भी उन्हें श्रद्धा और प्रेम से निभाया जाता है।

श्रोताओं, आज जीवित पुत्रिका व्रत का पालन किया जा रहा है। जीवित पुत्रिका व्रत को जूतिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत एक पवित्र 3 दिवसीय हिंदू त्योहार है, जिसमें माताएं अपनी संतानों की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए व्रत रखती हैं।

श्रोताओं, जीवित पुत्रिका व्रत मुख्य रूप से नेपाल और भारत के राज्यों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में हिंदू चंद्रमास आश्विन अर्थात कृष्ण पक्ष की सातवीं से नवीं तिथि तक के दौरान मनाया जाता है। इस व्रत का निर्वाह करते हुए माताएं अपनी संतानों की रक्षा की ओर अधिक ध्यान देती हैं। खुशी की बात यह है कि इस व्रत का पालन हमारे देश मॉरिशस में भी किया जाता है।

श्रोताओं, चूंकि इस अनुष्ठान के 3 दिन होते हैं, तो प्रथम दिन माताएं किसी नदी या तालाब में पवित्र स्नान करती हैं और दोपहर से पहले एक बार शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हैं। दूसरे दिन माताएं एक कठोर निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका अर्थ है कि वे 24 घंटे से अधिक समय तक भोजन या पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं। वे दिन और रात प्रार्थना करने तथा व्रत की कथा सुनने में बिताती हैं। और तृतीय दिवस पर सुबह की पूजा और अनुष्ठानों के बाद व्रत समाप्त होता है और माताएं पारंपरिक उत्सव के पकवान खाकर अपना व्रत खोलती हैं।

श्रोताओं, इस व्रत की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं के एक महान राजकुमार राजा जिमूतवाहन की कहानी से जुड़ी हैं। उन्होंने देव्य गरुड़ से नाग परिवार की संतानों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। उनकी अत्यधिक निस्वार्थता और करुणा से द्रवित होकर देवताओं ने उन्हें जीवन दान दिया था। तब से माताएं अपने स्वयं के बच्चों की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिमूतवाहन और देवी जीविता के आशीर्वाद का आह्वान

माताओं का यह मानना है कि इस कठिन व्रत का पालन तपस्या के रूप में किया जाए और यह करते हुए उन्हें यह आश्वासन होता है कि उनकी संतानों पर आँच नहीं आती है। यह व्रत माताओं की श्रद्धा और प्यार का प्रतीक है। माताएं दृढ़ विश्वास के साथ इसका पालन करती हैं क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि इसके पालन से उनके बच्चों को दिव्य आशीष प्राप्त होंगे।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.

朋友，今天的音乐风景线就到这里跟大家说再见了，谢谢您的收听，祝听众朋友度过愉快的周末，下次见。

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे तीना नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने नोट किया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के काम को नई गति देने और सरकार द्वारा घोषित उपायों को तेजी से लागू करने के लिए इसके बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस पुनर्गठन में अन्य लोगों के साथ जी क्वांग जिलबेशु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है। पासुहामन चिलन, जिन्हें जयन चेलम के नाम से भी जाना जाता है, उनको उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और फिर वीरेंद्र मुसाई को स्वतंत्र सदस्य यानी इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया गया है। कैबिनेट ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल नंबर 3 रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऐसे ट्रैफिक अपराधों के फिक्स पेनाल्टीज अब ऑनलाइन भरे जा सकेंगे जिनमें पेनाल्टी पॉइंट्स नहीं लगते। 30 अक्टूबर 2026 से जनता सुप्रीम कोर्ट पोर्टल के जरिए ट्रैफिक जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान कर सकेगी। इसके लिए लोग अपने मोपास अकाउंट से अपनी पहचान की पुष्टि करेंगे और फिक्स पेनाल्टी नोटिस यानी FPN नंबर तथा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे। भुगतान मोपास QR कोड के जरिए जूस या पॉप जैसे आप पेमेंट एप्लीकेशन से किया जा सकेगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकेगा। बैंक ऑफ मॉरिशस ने देश में नकली नोटों के चलन को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें, नोट पर बने सुरक्षा चिन्ह, उभरे हुए निशान, नोट को झुकाने पर दिखने वाले बदलाव और यूवी लाइट में नज़र आने वाले खास निशानों से इसकी पहचान की जा सकती है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने लोगों से नोट लेते या इस्तेमाल करते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। पहली जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के पास कुल 363 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 167 मामले स्कूल से जुड़े थे, 63 परिवार से और 11 ऐसे बच्चों से जुड़े थे जिन्हें विशेष ज़रूरतें यानी स्पेशल नीड्स है या जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं। इस दौरान जांच टीम ने 20 फील्ड विजिट्स भी किए। आंकड़े ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन की 2025-2026 वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसे कल पोर्टवीक के गोदा आर्ट सेंटर में पेश किया गया। और विदेश में फ्लाई दुबई फ्लाइट में हुई घटना ने इसराइल की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चैनल 12 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि ओमानी पायलट टेल अवीव कैसे आ पाए। इसराइल की एयरलाइंस में उन देशों के पायलटों पर रोक है जिनके इसराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, तो फिर आखिर फ्लाई दुबई फ्लाइट में ओमान का पायलट कैसे आ पाया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: नारद रोड पे चिरा फ्रेमी नवासी साल के 89 years old के श्री चंदोदत्त गुहाऊ जो चंदर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज सपहर 3 बजे उनके बेटे श्री कृष्णा गुहाऊ के घर नारद रोड पचिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पचिराफे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड मेल रोज में 86 साल की 86 years old की श्रीमती रमावती मूर्ति पैदाइशी नाम गुदौर जो मामा आदिप नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री आदिप मोती के घर रॉयल रोड मेलहोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मुंताब लॉन्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Check your time, din ke 12:04 hue hain.
5: Suhana Safar.
4: Hamare pyare pyare sangeet ke hum safaron ko hello, namaskar aur aadab. रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप भी आपका स्वागत है और आपकी सखी अनीता यहाँ पर हाजिर हो गई है आप लोगों से बातें करने के लिए, आप लोगों की बातें भी सुनने के लिए, साथ ही साथ आप लोगों की पसंद के गाने चलाने के लिए इन वन एंड ओनली आफ्टरनून शो जिसका नाम है सुहाना सफर। वेल दोस्तों, अक्टूबर का महीना भी आ गया है और आज हम 3 अक्टूबर 2026 हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों का जो वीकेंड है वो ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है और आप भी मस्त हैं। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को रफ्तार देते हैं। चलिए हम रिलीव द टाइमलेस रोमांटिक ब्यूटी ऑफ तुम आ गए हो नूर आ गया है फ्रॉम द क्लासिक बॉलीवुड फिल्म आंधी। बहुत ही प्यारा गाना है, इसे एंजॉय कीजिए।

0: सुहाना सफर।
1: यस दोस्तों, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। दिस सोलफुल मेलोडी ब्यूटीफुली कैप्चर्स द इमोशंस ऑफ लव, टुगेदरनेस और हार्टफेल्ट रोमांस, जो इस गाने को हिंदी सिनेमा के यादगार गानों में से एक बन जाता है। दिग्गज कलाकार लता जी और किशोर दा की आवाजों में गाया यह गाना सदाबहार युगल गीत अपनी भावपूर्ण गायकी और यादगार धुन से आज भी लोगों के दिलों को छू लेता है ना। साथ ही साथ अर्दी बर्मन साहब का मनमोहक संगीत और गुरजार साहब के दिल को छू लेने वाले बोल इस गाने को क्लासिक बॉलीवुड संगीत के शौकीनों के बीच हमेशा पसंदीदा बनाए रखते हैं। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुना सफर कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन पर, और ऑफ कोर्स हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर 5250-6200 पर मैसेजेस और 4028070 पर फोन कॉल्स। एंजॉय दिस वन। इजाजत।

जी दोस्तों, काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और मौका से जो हैं यहाँ पर सुदेवी जी साथ दे रही हैं और कार्यक्रम को एंजॉय कर रही हैं। और आपने फिल्म रुखसत का गाना मांगा है, यहाँ गाना खासकर आपके पति राज के नाम और बच्चों के नाम, सभी सुनने वालों के नाम।

सफर। जी दोस्तों, 12:23 हुए हैं और यहाँ पर आपके जो मैसेजेस हैं, फोन कॉल्स हैं, वो प्यार की तरह यहाँ पर जो है बारिश की तरह बरस रहे हैं। थैंक यू प्यार जताने के लिए। और यहाँ पर जो है ट्रियोले से कल्याणी जी साथ दे रही हैं और आप सुनना चाह रही हैं फिल्म कर्तव्य का गाना। और यही गाना जाएगा आपकी चार बेटियों के नाम, श्वेता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नितिशा, पति वीरेन हैं, छोटा नातिन जियांश हैं, शिवांश हैं, पूरे दुआऊ परिवार है। और हमारे टीम के लिए भी आपने गाना मांगा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए आशा जी को सुनते हैं।

दोस्तों, कहा गया है कि जिंदगी जो है बहुत छोटी है, जो पलक झपकते ही बात क्षमा कीजिए बीत जाती है। तभी तो रूठे मनाने में वक्त गवाना नहीं चाहिए। जो आपको मोहब्बत दे उसे प्यार दे, उन्हें अपना लीजिए, और जो दूर जाना चाहता है उसका नाम दिल से निकाल लीजिए, उसे जाने दीजिए। छोटी छोटी बातों पर जो है दिल को मायूस मत कीजिए, जिंदगी बहुत छोटी है। जी दोस्तों, यहाँ पर माधुरी जी साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म अनारी का गाना, और आप सभी को हैप्पी वीकेंड, लवली वीकेंड कह रही है। थैंक यू इसके लिए जी। तो चलिए, यह गाना आपके नाम, और आपने ये भी लिखा है कि सचमुच आपके आने से नूर आ गया है। थैंक यू जी इस स्वीट मैसेज के लिए। तो चलिए अब सुनते हैं लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब को, हम तो जिस राह पे जाते हैं।

0: सुहाना सफर,
1: सुहाना सफर।
2: जी दोस्तों, सोना सफर कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और कहा भी जाता है कि दुनिया जो है बहुत छोटी है और कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाते हैं, तकरार हो ही जाती है। और फीका फ्लक्स से अनीता जी साथ है दे रही हैं और आप कहती है कि घर की साफ सफाई आप कर रही है, साथ ही साथ आप सभी माताओं को जो हैं जुटिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ दे रही है। थैंक यू इसके लिए जी। तो जितनी भी माताएं जो हैं आज व्रत रख रही हैं अपने बेटों के लिए, तो उनको कहेंगे खुहाश धैर्य जी। और साथ ही साथ आप कहती है कि आज आपके बेटे अंकुश का जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं पत्नी अशिमा की ओर से। बेटी आध्या है, पापा राज है, मामा अनीता है, भाई अंतिश है, भाभी मनीषा है, भतीजी हिमेशा है, भतीजे अंश है और सासू माँ इंद्राणी है। तो इन सब की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आप जीवन में प्रगति करें। साथ ही साथ निर्मा जी फ्लैग से साथ दे रही है, तो यही गाना आपके बेटे रोशन के नाम जा रहा है मन्ना दे की आवाज में। चलिए सुनते हैं, तुझे सूरज कहूँ या चांद।

0: दोस्तों आज जो है एक बहुत ही ख़ास दिन है। हम जानते हैं कि जब किसी का जन्मदिन होता है तो वो खास ही होता है, लेकिन आज एक ऐसी औरजी का जन्मदिन है जिन्हें मृगनयनी भी कहा जाता है, जिन्हें मनमोहिनी भी कहा जाता है, जो सभी के दिलों को लुभाने वाली हैं। ऑफ कोर्स वन एंड ओनली रत्ना जी, आज रत्ना जी का जन्मदिन है जो आप लोगों का मनोरंजन करती है। तो रत्ना जी आपको हम कहेंगे ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे टू यू, और खासकर आपके लिसनर्स की ओर से जो आपको बहुत ही पसंद करते हैं, और विशेषकर श्यामा रघुनंदन जी की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो आपसे कहती है कि फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, खुशी के आंसू छलकते रहे आपकी निगाह से, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। यस ऑफ कोर्स रत्ना जी, आप हमेशा जो है खुश रहे, कामयाबी आपकी आपके कदम छूमे, एंड ऑफ कोर्स हमेशा आप जो है जिस प्रकार से आप हंसती रहती है, खुश रहती है, पॉजिटिव रहती है, ये हमें भी इंस्पायर करता है। आपकी जो अदाएं हैं इंस्पायर करती है, तो थैंक यू फॉर योर एवरी टाइम यू हैव सपोर्टेड अस, तो थैंक यू रत्ना जी इसके लिए। और ऑफ कोर्स श्यामा जी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको, और ऑफ कोर्स यही गाना चाहेगा श्यामा जी के भाई के नाम अजय प्रकाश, भाभी नम्रता, साथ ही साथ नेफ्यूज है युधिष केशव, आपकी बहन विजयंती है, आपकी सहेलियां हैं विश्वानी दुखी, विना गामफुल, और जितने भी आपकी सहेलियां उन सब के नाम यह गाना। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू रत्ना जी।
1: दोस्तों आज मैं पहली बार गज़ल गायकी की दुनिया में एक नई चीज़ पेश कर रहा हूँ, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गायकी टूट गए लिखने वाले शायर जनाब ख़तिल शिफाई साहब की गज़ल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने। वाह।

दोस्तों, भगवान जो हैं वो भी टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। बादल टूटे तो बारिश, बीज टूटे तो पौधा। इसलिए जब खुद को टूटा हुआ महसूस करे तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य, किसी बड़े पर्पोस के लिए तैयार कर रहे हैं। सुरीनाम से जयश्री जी साथ दे रही हैं और आप कहते हैं कि आपका जन्मदिन है आज, तो हम आपको बेशक कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू जयश्री जी। और साथ ही साथ आपके साथ हैं आज मामा ऐश्वंती, तो आप दोनों जो हैं एक साथ एक दूसरे के साथ देते रहना, हम यही कहेंगे। और आप जो हैं जान हाजिर हैं, फिल्म का गाना सुनना चाह रहे हैं अमित कुमार, दिलराज कौर और मनहार की आवाज़ों में, तो चलिए यहाँ गाना आप लोगों के नाम। एंजॉय दिस वन।

0: जी दोस्तों, मनोज सोहन की फरमाइश से यह गाना हम बजवा रहे हैं। यह गाना आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम, गाय सिंह आश्रम के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके नाम। साथ ही साथ सोहन परिवार के नाम L'Espérance Trébouché से
1: चिट्ठी आई है।
0: और हमारे लिए भी आपने गाना मांगा है, हमारे परिवार के लिए। थैंक यू इसके लिए जी मनोज सोहन जी। तो यह गाना आप लोगों के नाम।

0: Conhecei você, Rete. Lisson TSN, chip de samachar, apse sumera. Namaskar.
1: Namaskar, Radab. Association des consommateurs de l'île Maurice Assim, Sarkar se mankarta hain ki wo petroli pedavaron ki qeematon ko 2 rupay se ghatae. Kal Bali Village mein ek press sammelan ke dauran sangathan ke mahasachiv Jayant Chilam ne prati liter petrol aur diesel ke damon par lage tax par jankariyan di. Unka kehna hai ki chawal, आटा और घरेलू गैस तथा बस सब्सिडी के लिए जो टैक्स हैं वो जायज हैं लेकिन 2 रुपए का टैक्स सरकार की आमदनी में चला जाता है जो अच्छा नहीं है जिससे उसे इतना बड़ा फर्क नहीं होता है ये ईंधन के कुल 15% टैक्स में सिर्फ 0.69% हैं कल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की प्रशासनिक परिषद का पुनर्गठन किया जाए जिरबे अशुप और टाइम अध्यक्ष की हैसियत से नामजद हुए हैं और जयंत चिलम उपभोक्ताओं के फायदों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के तौर पर बोर्ड मेंबर होंगे जबकि वीरेंद्र मुसाई आजाद सदस्य के रूप में इस टीम का हिस्सा बने हैं जून में एक पहले चरण के बाद अब माइटी लर्न ने एक नया मरहला शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर शैक्षिक प्लेटफॉर्म का एक बेहतर वर्जन मुहैया कराया गया है 12 कॉलेजों में ग्रेड 9 के करीब 1200 तलबा यानी छात्र इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे विदेश में कीव यूक्रेन में रूस ने एक बड़े पुल पर हमला किया ये सबसे गंभीर मूलढांचा हमलों में से एक है आज सुबह सवेरे इस घटना के कारण पुल पर बहुत ट्रैफिक पैदा हो गया शहर के मेयर ने कहा कि इन हमलों से कीव नष्ट होता जा रहा है तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए Quand le vieux Okule mi 74 साल के 74 years old श्री लक्ष्मी एटवारोवा श्री लक्ष्मी एटवारोवा जो दुख के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज सपेर 3 बजे आज 3 बजे के घर कॉन्लिव्यू उकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भी कहा कि शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रेमेशन टुडे एट 3 पीएम शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
4: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
5: सुहाना सफर

जी दोस्तों, 1:03 हुए हैं और सुहाना सफ़र कार्यक्रम हम जारी रख रहे हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। और पुनः इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आपकी सखी अनीता साथ दे रही है हमेशा की तरह आपकी अफ्तनून जो है हम सफ़र, गीतों का हम सफ़र यहाँ पर हाजिर है। और अभी से लेकर 2 बजे तक आप लोगों की पसंद के गाने अवश्य होंगे।

यहाँ पर जो है उषा जी ब्रह्मस्थान से साथ दे रही हैं और आप मेरे जीवन साथी का गाना सुनना चाह रही है, तो चलिए यहाँ गाना आपके नाम दीवाना लेके आया है, तो यहाँ गाना आप सभी के नाम और जो लोग जो हैं राजेश खन्ना के फैन हैं उनके नाम यहाँ गाना जाता है।

0: का सफर।
1: जी दोस्तों, हम भी आ गए हैं आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए। और यहाँ पर रखनीदा से किरणपुरी जी भी साथ दे रहे हैं, और उनके साथ साथ जीजे लाल नरेंद्र कुमार निंदी, काला राम कारीगर जो हैं साथ दे रहे हैं। और चलिए साथ ही साथ आपादू परिवार खुशनुआ से साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ कौन है, दागन है, श्वेता है, रविश है, प्रीशा है, लवशा है, तो उन सब के नाम अगला गाना फिल्म नूरी का गाना आप लोगों के नाम।

जी दोस्तों, अगला गाना फिल्म जवान मोहब्बत से लिया गया है और यहाँ गाना जाएगा खासकर मोहम्मद रफ़ी की फ़ान के लिए, जो हैं शमीमा ऑफ पोइंटो साबर। और साथ ही साथ यही गाना जाएगा देवयानी जी के नाम, पूरे छेदी और देवधारी परिवार के नाम, और वरिष्मा फ्लाकर।

आसना से विना जी साथ दे रही हैं और फिल्म हिना का गाना पूरे नंदू परिवार के नाम और साथ ही साथ आपकी प्यारी बहन गीता के नाम।

दोस्तों, क्या खूब कहा गया है कि दूध जब फट जाता है तो वह पनीर बन जाता है और पनीर की कीमत दूध से अधिक होती है। दूध जब सड़ जाता है तो वह चीज

चीज़ अर्थात फ्रोमाज बन जाता है और चीज़ की कीमत भी पनीर से अधिक होती है। दूध जब जल जाता है तो घी बन जाता है और घी की कीमत पनीर और चीज़ से भी ज़्यादा महंगी होती है। इसका मतलब बड़ा ही सरल है कि जब भी कोई चीज़ टूटती है, बिखरती है, जलती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। इसी तरह ज़िंदगी में आप भी जब परेशान हैं, टूट रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी कीमत बढ़ने वाली है।

जी दोस्तों, और आज जो है काफ़ी लोगों का जन्मदिन है, और आज कोई ख़ास का जन्मदिन है। यहाँ पर यशवीना दिहाल जी का जन्मदिन है, और पति की ओर से आपको ढेर सारे शुभकामनाएं दी जा रही है। साथ ही साथ पति जो है कह रहे हैं कि उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा, उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया होगा। उसने भी बहाए होंगे आंसू, उसने भी बहाए होंगे आंसू जिस दिन आपको धरती पर भेंट कर खुद को अकेला पाया होगा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको यशवीना दिहाल, और पूरे डिहार और सुकन परिवार की ओर से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जा रही है। और वे आपसे कहती है कि वी ऑल लव यू। वाओ, और एक रोमांटिक डिनर तो बनता ही है। हम आशा करते हैं कि पतिदेव जी आपको डिनर पर ले जाएंगे। और देखो देखो, यशवीना जी जो है ब्लश कर रही है। तो हमारी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं यशवीना जी, और यहाँ आपका दिन है, आपका स्पेशल दिन है, तो ज़रूर एंजॉय कीजिए। और पतिदेव की ओर से एक रोमांटिक वाला गाना, फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, आपके नाम, आप दोनों के नाम, चेरिश योर मोमेंट्स।

0: वेल दोस्तों, जब लोग अपने नाम सुनते हैं रेडियो पर तो बहुत ही भावुक हो जाते हैं कि किसी ने हमें तो स्पेशल महसूस किया। और यहाँ पर जो है हरीश जी वो वैसे से साथ दे रहे हैं और आप कहते हैं कि कोई ना कोई जो है आज चुप चुप है, कुछ नहीं कह रही है। तो चलिए, यह प्यारा गाना ऑफ कोर्स अनु को इशारा मिल ही गया होगा। अनु, आपके लिए यह गाना हरीश जी की ओर से।
1: कब तक

जी दोस्तों, पायसे नन्ना जी साथ दे रही हैं और फिल्म सौतन का गाना जो है जाएगा पति दीपक के नाम। आपके बच्चे हैं अविनाश, अभिषेक, अविनाशिल, नाती गोलू और वी, पूरे गणेश और पुनीता परिवार के नाम।

0: कसम आऊंगा।
1: जी दोस्तों, यहाँ पर हमें काफ़ी बर्थडे विशेज मिले हैं रत्ना जी के नाम पर, और काफ़ी लोगों ने उन्हें विश ब्लेसिंग ये सब दिया। एंड बाय रिटर्न जो है रत्ना जी ने आप सभी लिसनर्स को थैंक यू कहा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। वो जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे अर्थात कार्यक्रमों के माध्यम से। तो उन्होंने कहा थैंक यू फॉर योर स्वीट मैसेजेस, और वो बहुत खुश हुई, अपने आप को ब्लेस वो समझ रही है। सो थैंक यू लिसनर्स जिन्होंने रत्ना जी को बर्थडे विशेस भेजा है, थैंक यू। और यहाँ पर जो हैं अनीता जी मोहतालबिया से साथ दे रही हैं, और आप कहती हैं आपकी प्यारी प्यारी सी आवाज़, तुम्हारी सदा मुस्कुराते रहो, ये दिन तेरे लिए शुभ हो। थैंक यू माधु अनीता जी, थैंक यू इसके लिए। और हम यही कामना करते हैं कि आपका भी दिन जो है शुभ हो। और आप जो है फिल्म आईना का गाना

सुनना चाह रही हैं और यही गाना जाएगा सभी दोस्तों के नाम, करुणा, अमृता, कविता, अनीता सब के लिए। तो चलिए यह गाना आपके नाम और क्या पता किसी खास के नाम भी हो।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, देखते ही देखते सुहाना सफर कार्यक्रम समाप्त होने चला है। और जिस तरह से जो है टाइम जल्दी जल्दी जो है चल जाता है, 2 घंटे पता नहीं कैसे समाप्त हो जाता है और सिर्फ एक अंतिम गाना बचा हुआ है और आपकी सखी अनीता के जाने का समय आ गया है। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों के लिए जो गाने बजवाते हैं, आप लोगों की पसंद जो गाने यहाँ पर बजते हैं, इसके लिए जो है

हम आशा करते हैं कि आप जो है बहुत खुश हुए आपने अपने गानों को सुनकर, और जो आप मैसेजेस भेजते हैं आपके फ़ोन कॉल्स, इसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं कि आप हमें यहाँ सुनते हैं, आप जो है कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, तो थैंक यू इसके लिए। और ठीक 2 बजे जो है आप समाचार सुन पाएंगे, और उसके बाद इतिहास के झड़ों के कार्यक्रम अलका जी और सुमिता जी के माध्यम से सुन पाएंगे। और जो अंतिम गाना जाएगा ऑफ कोर्स, यहाँ पर किसी ने मैसेज भेजा है, कोई शुभचिंतक है पूनम जी के नाम, लेकिन यहाँ पर पूनम जी नहीं है, अनीता जी है। तो चलिए प्यार दीवाना होता है कति पतंग का गाना आपके नाम जाएगा, और यही गाना जाएगा जिन लोगों को लाइन नहीं मिली आज उन सब के नाम यहाँ गाना जाएगा। विमला जी ऑफ घोंगुब है, बबू अनंत ऑफ बुबा से है, सुबोध जी वाकवा से है, और सभी सुनने वालों के नाम। साथ ही साथ आज हमसे बात की है सायदा जी नुवेल दे कुवैत से, उन्होंने हमें बात की उन्होंने, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सायदा जी। तो यह गाना आपके बेटे इरफान के नाम, और जुहान आपकी आपके नाती है। तो चलिए आप सब के नाम यह गाना, और अनिता को दीजिए इजाज़त, अब अगले शनिवार को मिलेंगे। ऑफ कोर्स टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ, वीकेंड का समय है, हैव ए मी टाइम एंड बाय बाय।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं सुमैरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार और आदाब. जून में एक पहले चरण के बाद अब माइटी लर्न ने एक नया मरहला शुरू किया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर शैक्षिक प्लेटफॉर्म का एक बेहतर वर्जन मुहैया कराया गया. 12 कॉलेजों में ग्रेड 9 के करीब 1200 तलबा यानी छात्र इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे. एसोसिएशन दे कंसोमेटर दे लिल मोरिस आसिम सरकार से मांग करता है कि वो पिट्रोली पैदावारों की कीमतों को 2 रुपए से घटाए. कल बेल विलेज में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संगठन के महासचिव जयंत चिरम ने प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगे टैक्स पर जानकारियां दी. उनका कहना है कि चावल आटा और घरेलू गैस तथा बस सब्सिडी के लिए जो टैक्स हैं वो जायज हैं, लेकिन 2 रुपए का टैक्स सरकार की आमदनी में चला जाता है जिससे उसे इतना बड़ा फर्क नहीं होगा. ये ईंधन के कुल 15% टैक्स में सिर्फ 0.69% है, इसलिए इन्हें इसे घटाना मुनासिब है. कल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की प्रशासनिक परिषद का पुनर्गठन किया जाए. जिलबिया शू पर टाइम अध्यक्ष की हैसियत से नामजद हुए हैं और जैन चिरम उपभोक्ताओं के फायदों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के तौर पर, जबकि वीरेंद्र मुसाई आजाद मेंबर के रूप में इस टीम का हिस्सा बने हैं. विदेश में कीव यूक्रेन में रूस ने एक बड़े पुल पर हमला किया. ये सबसे गंभीर मूल ढांचा हमलों में से एक है. आज सुबह सवेरे इस घटना की वजह से पुल पर बहुत ट्रैफिक पैदा हो गई. शहर के मेयर ने कहा कि इन हमलों से कीव नष्ट होता जा रहा है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. रामकिशन लेन जेबिया रोड रोजबेल में 77 साल की 77 years old श्रीमती सांता कुमारी जिलोल जो तारा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी बेटी सुबह रोशनी के घर रामकिशन लेन जेबिया रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 10 AM. Shimelago, Notre Dame, 38 salke, 38 years old, Shri Binesh Kumar Basawan, Jo Benjole ke naam se zyada jane jate the, ki mrityu ho gayi hain. Arthi, kal subah saadhe nau baje, inki maa, Bidesi Mala ke ghar, Shimelago, Notre Dame se uthakar antim sanskar ke liye, Triole ki shamshan bhoomi li jai jayegi. Cremation tomorrow at 9:30 AM. Royal Road, Petit Raffremé, 84 साल की, 84 years old, श्रीमती सत्यावती बंधु, पैदाइशी नाम बहन, जो सत्यावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर रॉयल रोड पेटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेटी राफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. Quand le vieux Okuleme, 74 salke, 74 years old, Shri Lakshmi Etua Rowa, jo duk ke naam se zyada jane jate the, ki mrityu ho gayi hain. Arthi, aaj sapher 3 baje inke ghar, Quand le vieux Okule se utha kar antim sanskar ke liye bhi gaga ki shamshan bhoomi le jai jayegi. Cremation today at 3 PM. Shok mein dube parivaron se hame hamdardi hain.
2: On NBC Play and NBC.mu. Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: इतिहास के झरोकों से

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ चुके होंगे रेडियो मनोरंजन पर RM3 पर, और हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 4028070 पर। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे इतिहास के उस पन्ने से जो इतिहास बनकर भी इतिहास नहीं बन पा रहा। तो सुमिता
1: जी, हाँ नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं रेडियो मनोरंजन पर। और आप सभी को तो पता ही है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मनाते हैं, तो आज का हमारा इतिहास के झरोखे जो कार्यक्रम है गांधी जी पर आधारित होगा। और साथ ही इसी दिन को जो है नॉन वायलेंस डे के रूप में भी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी जो है शांति का प्रतीक थे, गांधी जी जो है एकता का प्रतीक थे, और गांधी जी जो है नॉन वायलेंस के जरिए उन्होंने न जाने कितने कदम उठाए, और आज उन्हीं कदमों पर जो है बहुत सारे लोग जो है चलते हैं और अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाते हैं। और गांधी जी की बात करें तो मॉरिशस के संदर्भ में भी उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है मॉरिशस के स्वतंत्रता दिलाने में। और साथ ही हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे जितने भी श्रोता इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। 4028070 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इस गाने के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं तो लगे हाथ जरा उनको लेते हैं, फिर हम इतिहास के पन्नों को जरा पलटने की कोशिश करते हैं। देखे जरा कौन जुड़े हैं। सुमिता जी हमारे साथ,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार बाबूआना
0: जी, कहिए।
1: इनकी आवाज तो
0: आवाज कम है,
1: पता नहीं।
0: थोड़ा जोर से आप बोलिए बाबूजी।
1: हाँ
0: बोलिए।
2: फिल्म का नाम था परिवार।
0: हाँ,
2: उसमें गीत है, आज है 2 अक्टूबर का दिन जिसने महात्मा गांधी का जन्म था।
0: जी जी,
2: अगर हो सके तो पेश करेंगे
0: जी। तो आप एक गाना सुनना चाहते हैं ना?
2: हाँ हाँ,
0: जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन आपको। तो श्रोताओं, श्रोता तो जुड़ने लगे और आज है 2 अक्टूबर का दिन, इस गीत को उन्होंने मांगा है। देखते हैं, ढूंढते हैं, अगर मिलेगा तो ज़रूर चलाएंगे। बाबू राम जी ने जो मांगा, उनकी बाबू अनंतवा जी ने जो मांगा है, उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन श्रोताओं, गांधी जी का नाम कुछ एक अलग ही तरह का है। वो इतिहास के पन्नों में भी है, वह आज भी है। आज भी उसके साथ इतनी नई बातें जुड़ रही हैं, इतने लोग उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जब मैं दिल्ली में गई तो मैंने सन्निधि राष्ट्रीय संग्रहालय में जब जाके सुना, उन्होंने गांधी जी के आवाज़ के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। अब आप केवल कौन सा आप सुनना चाहते हैं, वो तारीख या वो आंदोलन, उसको क्लिक कीजिए। डिजिटल उन्होंने सब डाल दिया और आप हेडसेट लगाकर गांधी जी की आवाज़ में उनके भाषण को सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, आज की साइंस ने तो सुविधा दे दी और अभी तो लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध की आवाज़ों को भी कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक युद्ध हुआ था तो हमारे शून्य में वो आवाज़ें होनी चाहिए। तो श्रोताओं, गांधी जी इतिहास के पन्नों में भी हैं, गांधी जी आज भी हैं। लगभग दुनिया की 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में गांधी जी का या महात्मा गांधी पर रिसर्च या उनके फिलॉसफी पर पढ़ाया जाता है और आज भी उनकी कही हुई बातों की व्याख्या नए नए ढंग से लोग करते हैं। गांधी जी ने क्या कहा, आज भी लोग उनकी जब व्याख्याएं करते हैं तो कभी कभी अपने मन की चीज़ें भी जोड़ देते हैं। और उस ज़माने में तो गांधी जी ने क्या कहा, इसे सुनने के लिए और ओबे करने के लिए लाखों लोगों के कान और दिमाग तैयार रहते थे। बापू ने क्या चीज़ कही, नवजीवन में क्या छपा, यंग इंडिया में क्या छपा, आज कौन सा आंदोलन होगा। आप सभी को याद है कि मॉरिशस ने जो 12 मार्च आज़ादी का दिन लिया है, वह भी गांधी जी की डांडी यात्रा के दिन से ही लिया है। 5 लोगों के साथ गांधी जी निकले थे और समुद्र तट पर 5 लाख लोगों के साथ वे पहुंचे थे। तो जिस कानून के लिए अंग्रेज़ों ने नमक पर कर लगाया, वह कानून बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी शोर के, बिना किसी मार के अपने आप ही गिर गया। तो श्रोताओं, किसी के व्यक्तित्व में इतना दम होना कि पूरी पब्लिक को वो अपने साथ लगा सके, ये अपने आप में एक अजूबा ही है।
1: बिल्कुल। और गांधी जी की बात करें तो जिस तरह से बिना लड़ाई झगड़े के, बिना मारपीट के, किस तरह से उस समय में उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया और उसके चलते जो है हमें आज़ादी मिली, आज के शायद नौजवानों को ना इन सब से सीख लेनी पड़ती है।
0: सुमिता, मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हड़ताल
1: जी,
0: बायकॉट
1: जी,
0: ये सबसे पहले गांधी जी ने ही सिखाए
1: जी,
0: कि बजाय कि आप दूसरे को मारें, आप एक को मारेंगे 10 और खड़े हो जाएंगे। और अगर सामने वाला आपसे थोड़ा शक्तिशाली है तो सालों युद्ध चल सकता है। उदाहरण के लिए रशिया का देख लीजिए, कितना वे लोग लड़ पड़े, सालों पूरी दुनिया बोल रही है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि अगर सामने वाले के पास साधन ज्यादा है तो आपको मुश्किल होगी। तो गांधी जी ने इसलिए अपनी लड़ाई को बिल्कुल साधनहीन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा से लड़ूंगा और इस शस्त्र ने इतना काम किया कि दुनिया भर के जितने रिपोर्टर्स थे, जब गांधी जी के जुलूस या आंदोलन होते थे तो रिपोर्टर्स ये खबरें दुनिया भर में छापते थे कि लोग निहत्थे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और अंग्रेज़ लोग उनको मारते हैं, कोड़े से मारते हैं, पोलो के जो जिसे खेलते हैं पोलो उससे मारते हैं। तो इससे अंग्रेज़ों की बड़ी बेइज्जती हो रही थी। इसीलिए कभी कभी नौजवान इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आप जब हड़ताल करते हैं तो आप मानो बाइकॉट करते हैं, आप मारते नहीं हैं सामने वाले को,
1: अपने हाथ
0: आप उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से।

तो गांधी जी ने यही किया। थोड़ा गहराई से गांधीवाद को समझना होगा। और गांधी जी का जीवन आसान नहीं था। जो व्यक्ति अपने आश्रम में डॉक्टर के कहने पर भी आम इसलिए नहीं खाता है कि पूरे आश्रम के निवासियों को आम नहीं मिल सकता, तो ऐसा व्यक्ति के

0: तो संसार के सभी संत यही कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ लिखता हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो श्रोताओं, ये जो गांधीज्म या गांधीवाद जिस पर फिल्में भी बनी इतनी उसकी व्याख्या करने के लिए, लेकिन एक बार गांधी जी के जीवन को गहराई से देखना चाहिए तब समझ आती है कि गांधी जी कैसे थे।
1: इतिहास के झरोखों से

0: श्रोताओं, आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली भारत को। यद्यपि मॉरिशस ने भी संघर्ष तो किया ही। सोचो 1834 से गिरमिटिया यहाँ पर आ रहे थे और 1968 में आज़ादी मिले। ये भी गांधी जी का धन्यवाद या परमात्मा का धन्यवाद या डेस्टिनी का धन्यवाद कि 1901 में गांधी जी जब यहाँ से साउथ अफ्रीका से गुजर कर मॉरिशस से गुजर कर भारत लौट रहे थे तो रास्ते में उनका जहाज़ जो है वो थोड़ा उसमें तकनीकी ख़राबी आ गई। इस कारण जहाज़ को यहाँ पर 19 दिन रुकना पड़ा। उस 19 दिनों में गांधी जी तो बहुत ही अपने साथ अपना यश लेके लौट रहे थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में काले गोरे के जो वर्ण भेद है उसके लिए काफ़ी संघर्ष किया था, तो बहुत सम्मान उनके साथ था जब वे वापस लौटे हैं। तो यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ के भी जो सेठ लोग थे या जो बिज़नेस करते थे, बिज़नेस कम्युनिटी थी, उन्होंने उनका स्वागत किया। उन 19 दिनों में गांधी जी के साथ बातचीत हुई और यहाँ तक कि यहाँ के गवर्नर ने उनको डिनर पर भी बुलाया था रेजुई हाउस में। तो श्रोताओं, वे एक सम्मान के साथ जा रहे थे पर इन 19 दिनों में जो कुछ उनकी बातचीत हुई, जो उन्होंने देखा, वे इस बात से समझ गए कि यहाँ पर गिरमिटियों का या भारतीय जो आप्रवासी या जो भारतीय गिरमिटियाँ, उनकी हालत अच्छी नहीं है। इसीलिए आप देखें, यहाँ से जाते ही 1907 तक उन्होंने मनीलाल डॉक्टर को खोज निकाला और उनको मॉरिशस भेजा कि आप जाके देखिए, क्योंकि मनीलाल डॉक्टर लॉयर थे, फ्रेंच जानते थे, अंग्रेज़ी जानते थे, हिंदी जानते थे, गुजराती जानते थे, संस्कृत जानते थे। तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो अपने क्लाइंट की दर्द को समझ सके और अपने जो आका हैं उसकी भाषा में उसको समझा सके। इसीलिए मनीलाल डॉक्टर ने यहाँ पर एक परिवर्तन की लहर शुरू की और आर्य समाज की स्थापना भी की थी। खैर, उस इतिहास में हम उतना नहीं जाएंगे, वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन गांधी जी ने 1901 की यात्रा के दौरान दो बातें यहाँ के लोगों को कही कि अपने बच्चों को आपको पढ़ाना चाहिए हर कीमत पर, हर बलिदान करके, और दूसरा, अब ये देश आपका भी है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको अब राजनीति में सक्रिय होकर भाग लेना चाहिए। तो श्रोताओं, आप देखिए 1901 में गांधी जी यहाँ से गुजरे हैं और 1930 के बाद एक पूरा वर्ग पढ़ लिख के बाहर से मॉरिशस में आ रहा है, जिसमें जय नारायण रॉय थे, जिसमें सरसिव सागर राम गुलाम थे। तो ये पूरा वर्ग, जिनके माता पिता ने हर तकलीफ को झेल के अपने बच्चों को, किसी ने इंग्लैंड भेजा अपने अपने साधनों के मुताबिक, किसी ने भारत भेजा, तो इस तरह से काशीनाथ किष्टो थे, भारत से पढ़कर आए थे। तो ये सब पढ़कर 30s के बाद जब मॉरिशस आते हैं और वहाँ पर गांधी जी के आंदोलनों को वे लोग देख चुके थे, या जो लोग इंग्लैंड में थे वे अंग्रेज़ों के अत्याचारों को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो जब वे लौटते हैं तो मॉरिशस में अपने हक, अपनी आज़ादी, अपनी अस्मिता के लिए लड़ना शुरू करते हैं। मतलब 30, 35, 36 तक ये लड़ाई जो हो रही थी, 68 में जाके आज़ादी मिली। तो श्रोताओं, आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिला करती है और भारत के तो बदकिस्मती कि पहले 500 साल उनके सिर पर मुगलों का शासन और उसके बाद 200 साल, फिर 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद 1857 से 1947 90 साल तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। तो इसमें भुलावे में बहुत रखा भारतीयों को उन्होंने, ये कहकर कि तुम्हारा कल्याण विक्टोरिया ही कर सकेगी, रानी ही कर सकेगी। तो इस भुलावे के कारण पर ये छल और भुलावा बड़ी जल्दी खुलने लगा, इसीलिए आंदोलन अपने रूप लेने लगे। पर गांधी जी अहिंसात्मक ढंग से लड़ना चाहते थे, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, कुछ समय जोड़े उसके बाद।
1: बिल्कुल, और गांधी जी के विचारों की बात करें तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सत्य की राह पर हमेशा चलना चाहिए, फिर चाहे मुश्किलें क्यों ना आए। और गांधी जी अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण भी रहे हैं कि कितनी मुश्किल से बाहर गए थे पढ़ने, कितना जो है मतभेदों का सामना उन्हें स्वयं करना पड़ा था, है ना। लोग किस तरह से उन्हें नापसंद करते थे, फिर भी अपने जो है हक के लिए लड़ना और साथ में लोगों की सहायता करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी
0: सेवा भाव उनके भीतर बहुत अधिक था। यहाँ तक कि दीन बंधु एंड्रयूज भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एक व्यक्ति जिसको कोढ़ था, उसको कोई छूना नहीं चाहता था, गांधी जी ने रात दिन उस व्यक्ति की सेवा खुद की थी। तो आप देख सकते हैं कि उनके जीवन, मतलब उन्होंने जीवन सेवा का जिया है, उन्होंने नर सेवा को ही माधव सेवा माना। तो हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, ज़रा हम उनको लेते हैं।

0: श्रोताओं, रंग दे बसंती केवल रंग नहीं है, उसके पीछे त्याग की भावना, वो जो रंग ही है ना, वो संन्यास त्याग बलिदान इसका है। तो जब कोई कहता है मुझे रंग दे बसंती, मतलब मैं तैयार हूँ राष्ट्र के लिए या बड़े किसी उद्देश्य के लिए मरने को। हमारे साथ सुमिता जी संकेत कर रही हैं कि एक श्रोता जुड़ी हैं, उनको सुनते हैं। नमस्ते आशा जी।
1: नमस्ते बहन जी, और सुमित जी को भी नमस्ते।
2: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: बस अच्छी हूँ, और आपके कार्यक्रम को सुन रही हूँ।
0: बहुत धन्यवाद।
1: जय बापू गांधी
0: हैं,
1: और कहना चाहूंगी बापू गांधी की सदा जय हो।
0: क्या बात है, तो आज कुछ सुनाओगी उन पर?
1: जी, मैं बस एक दो शब्द मैं भी जोड़ना चाहूंगी।
0: जरूर, स्वागत है आपका, बोलिए
1: जी। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि बापू गांधी इतिहास के पन्नों में भी थे और आज भी है।
0: हाँ।
1: और जब हम भारत देश का नाम ही लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम कहते हैं हाँ, भारत देश यानी कि गांधी जी का देश है। यानी कि बापू अपने देश से इस तरह से जुड़े थे कि जैसे वो धरती माँ के लाल, यानी कि हम कहते हैं हाँ, आजादी भारत देश को मिली तो बापू गांधी उनकी पूरी पूरी मेहनत, उनकी लगन, उनकी तपस्या से देश को आजादी मिली।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: और कहते हैं ना बहन जी, महान व्यक्ति कभी नहीं मरते, वो सदा सदा के अमर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और बापू तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे
0: जी।
1: पर ये सिर्फ कहना हाँ हम गांधी जी को मानते हैं, उनको पूछते हैं, बात यहीं पर नहीं रहती है। गांधी जी को मानने का सही अर्थ है मन में शांति बनाए रखना।
0: हाँ।
1: अब ये नहीं ना, आज के दौर में आप देखोगे कि एक पड़ोसी ने किसी पड़ोसी के कुछ कहा तो पड़ोसी ने पत्थर चलाकर उनके शीशा तोड़।
0: अरे पत्थर नहीं, गला ही काट डालते आजकल तो।
1: तो और फिर वो कहते हैं हम गांधी जी के को मानते हैं, गांधी जी के भक्त हैं। तो ऐसा नहीं होता है। गांधी जी को मानने का सही अर्थ है कि उन्होंने जैसे बिना शस्त्र, बिना तलवार, बिना बम के उन्होंने आजादी को प्राप्ति किया है, तो हमें भी मन में इस अहिंसा की अशांति को मार कर उनके बताए हुए राह पर चलना है, शांति के मार्ग पर चलना है। और अपनी नव पीढ़ी को भी गांधी जी के बारे में अगर हम कुछ सुनाते हैं तो उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि वे शांति के प्रतीक है। अगर बापू गांधी कहते हो तो उनके राह पर चलो और शांति के राह को अपनाते हुए चलो, तो देश, समाज, घर, परिवार सब शांतिमय वातावरण से बीतेगा और हम सब मिलकर कहेंगे गांधी जी की जय।
0: बहुत सुंदर आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी और इतने प्यारे शब्दों से आपने हमारी बात को आगे बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन आपको। तो श्रोताओं, सचमुच अगर जो समझते हैं ऐसे ही थोड़ी आज का दिन जो है, 2 अक्टूबर का दिन जो है वो अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया मना रही है, कुछ तो जादू है ना। हम यहाँ बैठ के बिना पढ़े बिना जाने कुछ भी यूट्यूब पर डाल देते हैं या कुछ भी व्हाट्सएप पर इधर से उधर लिख देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन दुनिया जानती है, जो रिसर्च करते हैं वे जानते हैं कि गांधीवाद असल में क्या है, गांधी जी ने दुनिया को क्या दिया, अहिंसा का रास्ता दिया कि लड़ाई इस तरह भी हो सकती है। क्योंकि अभी तक जितनी लड़ाइयाँ होती थी उसमें टिट फॉर टैट होता था और उसमें जो भी मरे बचे और जो जिंदा बचा, मतलब जो जीत जाता वही जीतता, मतलब एक जंगलियों वाली समझो लड़ाई होती थी। लेकिन गांधी जी ने पूरा पलटवार कर दिया। श्रोताओं, यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि उन दिनों मशीनों का आविष्कार शुरू हो गया था और इंग्लैंड के लंकाशायर नामक जगह पर कपड़े के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी, कपड़ों की मशीनें लग चुकी थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ भी वही किया जैसे मॉरिशस में गिरमिटियों को बहला फुसला के लाए, ऐसे ही जो भारतीय किसान थे, जो लोग कपास उगाते थे, उन लोगों से उनको कम मजदूरी दी गई, उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया गया और उनकी सारी कपास को शिप के माध्यम से लंकाशायर पहुँचाया जाता था। वहाँ पर उस कपास से कपड़ा तैयार होता था और आप माने या ना माने, वह कपड़ा फिर से भारत में आके भारत के लोगों को बेचा जाता था, मतलब आप ही का जूता आपके सर पर पड़ता था। तो गांधी जी भी वैश्य थे, जाति से, व्यापार खूब समझते थे। उन्होंने देख

0: था कि अंग्रेज़ों ने लूट मचा रखी है, इसीलिए गांधी जी ने चरखा और खादी की बात की। गांधी जी ने कहा कि हम कपड़ा वह पहनेंगे जो स्वदेशी है। उदाहरण के लिए आप मॉरिशस का देख लीजिए, आजकल हम SME की बहुत चर्चा करते हैं, अर्थात अपने देश के लोगों के हाथ की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना ताकि उनको रोज़गार मिले और हम अपने देश को उन्नत कर सकें। हर चीज़ बाहर से मंगाएंगे तो किस दिन हम पैरों पर खड़े होंगे। कोरोना में हाल बुरा हो गया था, तभी बार बार ये विचार आया कि बहुत चीज़ें इस देश में हमको खुद पैदा करनी पड़ेंगी, खुद बनानी होंगी। तो श्रोताओं, गांधी जी ने वह जो गांधी झोला, गांधी टोपी, गांधी कुर्ता, गांधी धोती जो पूरे देश में प्रचलित हुई, एक तरह से गांधी का नाम से प्रचलित हुई, उसने लंका शायर के सारे व्यापार को ठप कर दिया था। अगर आप समझ सकें तो ये कितनी बड़ी चोट उन्होंने पहुंचाई उनके इस व्यापार को, बिना किसी तलवार के, बिना किसी गोली के, चुपचाप उन्होंने स्वदेशी के आंदोलन का आह्वान किया। लोगों को कहा कि चरखा क्यों कहा चलाने को, क्योंकि इतना ज़्यादा खादी के कपड़े की डिमांड होने लगी कि देश पूरा नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि हर कांग्रेसी को सूत कातना चाहिए, आपको उत्पादक श्रम करना होगा, क्योंकि आप इस देश की रोटी खाते हैं, इस देश का अन्न लेते हैं। आप चाहे वकील हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे टीचर हैं, लेकिन सभी को रात को सोने से पहले कुछ सूत जो है वह उत्पादन करना होगा। तो जब सब चरखा कातने लगे तो कपड़ा भी ज़्यादा बनने लगा, और जो होली जलाई गई विदेशी वस्त्रों की, उसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मतलब अगर अब कोई लंका शायर से आए हुए महीन कपड़ों को पहनता तो समाज उसे एक हिकारत बड़ी नज़र से देखता था। तो इस तरह से उन्होंने पूरे देश की हवा को बदल दिया और अंग्रेज़ों की हवा टाइट कर दी।
1: जी हाँ, कहीं ना कहीं आंदोलन की बात करें तो हर बार आंदोलन इसलिए नहीं होता है कि सामने वाले की हम बुराई कर पाए। हाँ। आंदोलन अपने हक के लिए भी
0: वे
1: होता
0: कहते
1: है।
0: थे पाप से घृणा करो, पापी से
1: पापी
0: नहीं।
1: से नहीं, बिल्कुल। और कहीं ना, गांधी जी की छोटी छोटी बातें आज भी शायद हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती है। कहते हैं ना कि जो भी बदलाव आप समाज में देखना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम अपने आप को उठाना पड़ता है,
0: अपने घर से शुरू करना। और घर का मतलब होता है आपके अपने जीवन के सिद्धांत,
1: जी
0: उन पर आप चलकर दिखाएं, तब बात बनती है।
2: इतिहास के झरोखों से

0: श्रोताओं, जीवन में साधना आसान नहीं होती है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। गुजरात के नरसिंह मेहता एक कवि और संत हुए हैं, ये गीत उनका है और इस भजन को कहते हैं कि गांधी जी बहुत मानते थे और हमेशा इसे सुनना पसंद करते थे। कभी कभी तो लोगों को गलती लगती है कि शायद गांधी जी का लिखा हुआ है जबकि ये नरसिंह मेहता का है। इस भजन में जीवन की कड़ी परीक्षा है, किसी के धन पर नज़र नहीं होनी चाहिए, पराई स्त्री पर नज़र नहीं होनी चाहिए, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और जो व्यक्ति इन सिद्धांतों की पालना करता है वही वास्तव में अपने कुल को भी निस्तार करता है, अपने कुल का भी उद्धार करता है। तो पूरे एक संत के इसमें लक्षण हैं और गांधी जी इन लक्षणों को अपने भीतर उतारने की कोशिश कर रहे थे और 11 उन्होंने जीवन के व्रत भी दिए, जो एक पुस्तक लिखी है उन्होंने एकादश व्रत, वह भी उन्होंने इसी तरह की लिखी है।
1: बिल्कुल, अगर हम मानवीय जीवन की बात करें, अलका जी कहते हैं ना कि दया की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए, तो ये गाना अपने आप में उन्हीं चीज़ों को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे भीतर नहीं होंगी तो हम सामने वाले व्यक्ति का या अपने पड़ोसी के दुख को कैसे समझ पाएंगे, कैसे उसका साथ दे पाएंगे। और अभी के समय में समाज में इन सब चीज़ों की कमी हमें बड़ी दिखाई देती है कभी कभार।
0: और श्रोताओं, जोड़ना चाहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि गांधी जी कहते थे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि यह वाक्य गांधी जी का नहीं है। गांधी जी इस वाक्य का समर्थन करते थे लेकिन यह उनका नहीं है, यह ईसा मसीह का वाक्य है। तो ये भी एक तरह से वही अहिंसा वाला है कि जब तुमको कोई मार रहा है तुम जब चुपचाप सहते हो तो जो देखने वाले हैं वो मारने वाले के विरोधी हो जाते हैं। तो गांधी जी ने इस वाक्य की प्रशंसा की थी लेकिन लोगों ने चलते चलते कहा कि गांधी जी ने ऐसा कहा। तो श्रोताओं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही लोग कहते हैं गांधी जी के तीन बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गांधी जी के कोई तीन बंदर नहीं थे। एक जापानी व्यक्ति भारत आया था और वह जापान से ये लकड़ी की मूर्ति लाया था जिसमें तीन बंदर इस तरह से बैठे हुए थे। तो वह गांधी जी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गांधी जी को ये उपहार में दिए। तो गांधी जी ने उसे सराहा कि जीवन का बहुत अच्छे सिद्धांत है कि ना बुरा देखो, ना सुनो, ना बोलो। सचमुच अगर हम बोले ना तो कितना पालाप से बच जाए, और अगर सुने ना तो मन में ईर्ष्या ना पैदा हो, और अगर बुरी बातों को देखे ना तो ये जो आँखें हमारी हर समय खुली रहती हैं, परमात्मा ने बड़ा संकट में डाला हुआ है, बहुत बच जाए हम। तो गांधी जी ने वो जो उपहार था जापानी भाई का उसे वहाँ अपने कमरे में रख दिया। अब लोगों ने कहा गांधी जी के तीन बंदर। तो श्रोताओं, जब तक हम पढ़े नहीं, खोज नहीं करें, समझे नहीं, तब तक कुछ बातें हम सुनी सुनाई ही बोलते रहते हैं।
1: इसलिए तो कहते हैं ना कि बुरा सुनना नहीं चाहिए।
0: हाँ, कूड़ेदान हो जाता है, नहीं तो कान और मन दोनों। तो गांधी जी यही कहते थे, अपने मन और कान को कूड़ा मत बनाओ, सात्विक रहना है तो उस प्रभु का नाम और अहिंसा का व्रत, सत्य का व्रत लो। अस्ते मतलब चोरी ना करो, परिग्रह मतलब जितना आपको चाहिए उतना रखो। गांधी जी कहते थे प्रकृति ने हमको इतना दिया है कि पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं मरेगा, लेकिन कुछ लोगों के लालच ने

0: इस संतुलन को बिगाड़ दिया और आज हम यही देख रहे हैं कुछ देशों के पास बहुत साधन है और कहीं पर इतना सूखा और अकाल है कि लोग मिट्टी की रोटी बनाकर खा रहे हैं। आप सोचिए कैसे असंतुलन और प्रकृति का शोषण सब जगह पर हो रहा है।
1: इतिहास के झरोखों से

श्रोताओ सचमुच हिंदुस्तान की संस्कृति बड़ी गहरी है, इसलिए तो हम कहते हैं 8000 साल पुरानी संस्कृति। तो जब इतना आदमी मंजता है तो वहाँ विचार जो हैं बड़े गहरे होते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, उसकी जड़ें हमारे भीतर हैं। हम धर्म को समझते हैं, संयम को समझते हैं, सत्य क्या है इसको समझते तो हैं कम से कम। और जब कोई कहता है कि सत्याग्रह मतलब जीवन में सत्य का आग्रह होना चाहिए, तो इन बातों को समझने के लिए भी, जैसे उदाहरण के लिए लोग कहते हैं वह तो बड़ी सती सावित्री है, लेकिन विदेशी व्यक्ति को ये सती सावित्री शब्द समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हमारे इतिहास में सावित्री जैसी एक सतीत्व महिला हुई है जो अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ले आती है, सीता जैसी महिला हुई है जिसको रावण छू भी नहीं पाया। तो श्रोताओं यूरोप में वो कल्चर ही नहीं है, तो गांधी जी उसी भारतीय संस्कृति को जी रहे थे।

0: इसीलिए चाहे अहिंसा की बात हो, सत्याग्रह की बात हो, आंदोलनों की बात हो, गांधी जी ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किए, आमरण अनशन किए, एक बार तो 21 दिन तक वे बिना पानी और खाने के रहे थे, अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और उनकी बात माननी पड़ी। तो श्रोताओं, ये मजाक नहीं है, ज़रा एक दिन व्रत तो रख कर देखिए। लोग एक सप्ताह के लिए नॉनवेज छोड़ते हैं तो मर रहे होते हैं कि कब व्रत खत्म होगा और कब हमको कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन वहाँ तो व्यक्ति देश के लिए पानी खाना सब छोड़कर अमरण अनशन पर बैठे हुए थे। तो श्रोताओं, एक महान व्यक्तित्व थे, इसीलिए हमारी छोटी बुद्धि उनको न समझ पाए ये और बात है, लेकिन दुनिया तो बड़ी गहराई से उन पर काम कर रही है, फिल्में बना रही है, उनके जीवन को पढ़ने की कोशिश कर रही है, और जिस व्यक्ति ने फिल्म बनाई उसने गांधी के जीवन को जीने का अभ्यास किया। श्रोताओं, मैंने वो कक्षा देखी जहाँ पर जाके वे चरखा चलाना सीख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे गांधी का रोल करना है तो मैं ज़मीन पर सोऊंगा, और उन्होंने कहा मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, और उन्होंने कितने दिन तक बिल्कुल सच बोलने का अभ्यास किया। तो श्रोताओं, गांधी ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, बेकार की आलोचना या बेकार की बातों के लिए वहाँ पर स्थान नहीं है।
1: बिल्कुल, और जैसे कि हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों ने सिर्फ भारत को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया।
0: यहाँ तक कि जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन पर रिसर्च हो रही है।
1: बिल्कुल, हाँ,
0: इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पर वे लोग गांधी के अर्थशास्त्र को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, और जो लैंग्वेज वाले हैं वे गांधी जी का भाषा से संबंध, जीवन, ऐसे फिलोसफिकल डिपार्टमेंट, वे लोग गांधी जी की फिलोसफी के लेकर। तो हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो गांधी के बारे में क्या समझेंगे।
1: बिल्कुल, और जहाँ पर अभी के समय में चारों ओर हमें मतभेद नज़र आता है, एक दूसरे से लड़ रहा है, वहीं पर गांधी जी की बातों का आज भी उतना ही जो है मूल्य हमारे जीवन में
0: प्रासंगिक है। वो सारी चीज़ें पर समझने वाले की बुद्धि चाहिए।
2: इतिहास के झरोखों से

0: श्रोताओं, सचमुच इस देश की रूप ही कुछ ऐसा है, इसीलिए वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा संत पैदा होते हैं। अब आप कहेंगे जी असंत भी तो हैं, भाई जहाँ संत होंगे वहाँ असंत भी तो होंगे ना, क्योंकि संतों का तेज असंतों से सहा नहीं जाता, तो वे लोग फिर उनके लिए हर तरह की बातें भी करते हैं। और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, गांधी जी के नाम से ये मत सोचिए कि भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद के त्याग कुछ कम है, अपने अपने रास्ते थे, अपना अपना ढंग था। देखिए सब मिठाई बनाते हैं ना, सबका अलग अलग ढंग है, अलग अलग रुचि है। ये बच्चे जवान थे, इनमें जोश था, ये मरने मारना चाहते थे और ये सब कहते थे कि हम तो जल्दी मरना चाहते हैं ताकि फिर से जन्म लेकर आ सके। लेकिन गांधी जी कहते थे ये लंबी लड़ाई है, इसके लिए हमको जनता को साथ लेना होगा, अगर हम छोटी छोटी बातों पर उलझेंगे तो ये हमें मार देंगे, और जनता को साथ लेकर चलेंगे तो अंग्रेज़ों के लिए कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। तो वही उन्होंने किया। तो दोनों के रास्ते उत्तम थे, दोनों देश प्रेमी थे, दोनों देश के लिए लड़ रहे थे, तो हम किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कह सकते।
1: एक मैसेज भी यहाँ पर आया है अलका जी, प्रीतम जी की ओर से, जो न्यू ग्रोव से साथ दे रहे, कह रहे गांधी जी का शो वो सुन रहे हैं और गांधी जी ये भी बताते हैं कि किस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए।
0: हाँ, बहुत धन्यवाद। हमने असल में गांधी जी के बाद वाली चीजें ली और पिताजी का तो बहुत ही सम्मान वे करते थे, यहाँ तक कि प्रायश्चित का जब पत्र लिखा और पिताजी ने कुछ नहीं कहा उन्हें, वहाँ गांधी जी कह रहे कि मैंने जब उनके आंसू देखे जीवन ही बदल गया गांधी जी का। तो गांधी जी के मन में अपने माता, और देखिए माता से जो प्रतिज्ञा की, जीवन भर उस प्रतिज्ञा को निभाया। बहुत कठिन था उस समय इंग्लैंड में शाकाहारी बन के रहना, पराई स्त्री को नहीं देखना, तो ये जो मांस है उन्हें, और शराब ना पीना, ऐसे ठंडे देश में अच्छे अच्छे शराब पीने लगते हैं, लेकिन गांधी जी ने इन तीनों प्रतिज्ञाओं को पूरा किया और उस पर अटल रहे। तो दिखता है कि अपने माता पिता के प्रति उनके मन में कितना सम्मान था।
1: बिल्कुल,
0: बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए
1: तो चलिए इसी के साथ हमारा जो कार्यक्रम है वो भी समाप्त होने को चला अलका जी। अगले सप्ताह एक और विषय के साथ
0: बिल्कुल,
1: हम सबसे जुड़ेंगे। 3 बजे जो है आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा, इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे। तो अलका जी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार आप सभी।
0: नमस्कार।

0: बोधित करते हुए फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस FMP के लीडर पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति पर बात की, खासतौर पर जिंदगी की महंगाई को लेकर, रुपए मुद्रा का घटता भाव और पेट्रोली पैदावारों की कीमतों पर उन्होंने वर्तमान चुनौतियों पर भी बात की, जिनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नेशनल क्राइम एजेंसी का क्याम शामिल रहा। समुदाय में नौजवानों को कटिबद्ध नागरिक और राजदूत बनाना ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन प्रोग्राम के मकसदों में से एक है। प्रधानमंत्री दफ्तर की पहल पर ग्रेड 8 के 200 छात्र 2 हफ्तों के दौरान प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे। एक पहला सत्र आज सुबह रुपनाथ रामफल कालबास यानी जोन 1 में लगाया गया, जिसमें माता पिता ने भी भाग लिया। जून में एक पहले चरण के बाद अब माइटी लर्न ने एक नया मरहला शुरू किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर शैक्षिक प्लेटफॉर्म का एक बेहतर वर्जन मुहैया कराया गया है। 12 कॉलेजों में ग्रेड 9 के करीब 1200 तलबा यानी छात्र इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वे डीजल के निर्यात को रुकवाएंगे और इस फैसले के चलते G7 के नेताओं ने ऐलान किया है कि वे 100 मिलियन बैरल यानी डीजल के बैरल को जारी करेंगे, वो भी 20 दिनों के अंदर अंदर। इस कदम के ज़रिए निर्यात को ज़्यादा आसानी मिलेगी और विभिन्न आयातक देशों को भी राहत पहुंचेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। सिबोरत लेन लियोड नंबर 1 वाकवा में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देविका सिबोरत जो सुदेवी यानी एक्स मोशन जासो के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके घर सिबोरत लेन और यहूद नंबर 1 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। परमिशन टुमारो एट 11 AM। लिम्बियातू वाकवा में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री महादेव बापू जो बाबू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनके घर लिम्बियातू वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: On MBC Play and MBC.MU. Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio. Aaj ki charcha.
2: नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में हम किरण आप सबको एक स्वागत करत है। आज के चर्चा के जो विषय बा उ MRA के जो इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न बा बरिस के 2026 के उ कैसे चलता। जैसे जानेला हर बरिस जैसे सितंबर और अक्टूबर महीना आवेला त सब कोई इनकम टैक्स फॉर्म के भरे के शुरू कर देवेलन जा, और अब त इलेक्ट्रॉनिकली भी होवेला। और ई बरिस सितंबर महीना गुजर गल, अक्टूबर के मध्य तक 15 तक हमने के चाहे ई इनकम टैक्स फॉर्म भर के भेज देवे के, तो ई सब प्रक्रिया कैसे चलता और कौन कौन जानकारी आपके चाहेला हासिल करे के, कौन कौन बात से आपके चाहे परिचित रहे के, इस सब पर बातचीत करे खातिर आज हमने संगे MRA के टेक्निकल ऑफिसर हवन श्री लेखराम जगेसर जी। श्री लेखराम जगेसर जी नमस्ते, कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। जैसे हमने सब कोई जाने ला जा, अभी इनकम टैक्स के जो फाइलिंग सीजन बा वो चलता और ये प्रक्रिया कैसे चलता थोड़ा हमने के ये बतावा। अभी आधा समय जो बा वो तो गुजर गल, अभी और आधा से कमती समय बा हमने के सामने।
3: जैसे बोला जा हर साल की तरह सभी कॉन्ट्रीब्यूटर बोल रहे टैक्स पेयर्स लोग के चाहला अपन इनकम टैक्स रिटर्न भरे के, तो इस साल भी लानी फिनंशियर जो बोला था 30 जून 2026 जो टर्मिनल होल बा के बाद कॉन्ट्रीब्यूटर लोग के चाहला अपन इनकम टैक्स रिटर्न भरे के

0: एग्जेसिसवा हमनी एमओए के वेबसाइट के द्वारा करीला जा
1: जी
0: इलेक्ट्रॉनिक में भरीला सा तनी सुन लिस्ट होगी पर चल जाएगा आगे हमनी लोग इनकम टैक्स रिटर्न मैन्युअली फिल कर थली सा भर थली सा
1: फॉर्म भर के तब जाके
0: भर के सब लापोस द्वारा भेजा थली सा बहुत इनकन्वीनियंस हुआ था हल त टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब हेल एग्जिस्ट स्वयं मोरे जैसे बोली कि ओकर वेबसाइट से सब इलेक्ट्रॉनिक में भेजी लसा त हम सकब बोले कि है नया तरीका से सब कॉन्ट्रीब्यूटर लोग बहुत संतुष्ट हों सर काहे कि लोग घर वे से ही अपन बीरो से केनो रहियन सर कोनो देश में सकियन सा अपन इनकम टैक्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक में भेज दे
1: जरूर
0: ओके और एगो बात बा कि है सिस्टम वहाँ से देखब बहुत रैपिड बात जे लोग अपन रिटर्न भेज दे रहे हवान सा देखब वो लोग के रिफंड मिल गल बहुत ज्यादा अगर वो लोग के इंफॉर्मेशन को बोरे होला वो लोग के रिफंड सब मिल गल
1: तुरंत ही मिल जाए
0: एक हफ्ता
1: हाँ मतलब आगे तक जहाँ अटान करके कितना महीना
0: के तब चेक सब वगैरह मिला था अब सब इलेक्ट्रॉनिक
1: हो
0: गया तो
1: अब डायरेक्ट में वैसे हो
0: जाए वैसे हो जाए आज लेख सका बोले हमने के 116,000 फॉर्म से फॉर्म बोला था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जस्टी मिल गल
1: कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट कर
0: रहे नहीं अभी इतना नहीं सका बोले बस ही परसेंटेज वहां नहीं बा अभी हम
1: हां
0: बस हम अटेंड कर रहे थे ऐसा और मिली
1: जरूर जैसे जैसे दिनवा निक चला वेला वैसे वैसे सब कोई अब भरे के और शुरू कर देवे
0: और ये मोटे हुआ
1: था जी और फिर जब इनकम टैक्स के जो कॉन्ट्रीब्यूट बोला था जेके चाहे ना इनकम टैक्स भरे के तो ये जो श्रेणी में बा के लोग आवेला के लोग हवन सा कॉन्ट्रीब्यूट के चाहे ना इनकम टैक्स भरे के
0: हाँ जैसे बोला इस श्रेणी में जो कैटेगोरी बोला जा रहा है के चाहे ना अपन इनकम टैक्स भरे के
1: हाँ
0: ओके पहला है जे लोग के आमदनी है लानी फिनांशियल है कौन सा आमदनी यानी कि लोग के इनकम है लानी फिनांशियल में 500,000 से अधिक मिलल बा दूसर कैटेगोरी जन के आमदनी बिजनेस जो लोग आदमी बिजनेस करे लन जा और लोग के ग्रॉस इनकम 2,000,000 से ज्यादा बा तीसर का बा हो एम्प्लॉये लोग के जैसे हमने लोग जो उनके PAY कटाल बा और चौथा जो लोग के आमदनी से TDS माने कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एक और एग्जाम्पल बताएं तुहरा रेंटल इनकम मिलल बा एगो कंपनी से माना कि TDS है टैक्स कटाल बा उमे और पांचवा है एगो आदमी जिकन रेवेन्यू टैक्स हब
1: जी
0: ओके वो लोग के चाहिए ना इनकम टैक्स रिटर्न भरे के और ये एगो कैटेगरी बा सेल्फ एम्प्लॉयड लोग के जो आदमी है सब कैटेगरी में नहीं होवन सा यानी कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होवन सा वो लोग के भी चाहिए ना इनकम टैक्स रिटर्न भरे के
1: मतलब कि जे सेल्फ एम्प्लॉयड बा जेकर खुद के अपन कारोबार बा ओकरा भी चाहेला भरे के
0: हाँ है सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग के चाहेला अपन इनकम टैक्स रिटर्न भरे के और है लानी फिनांशियल में अपन आमदनी लानी फिनांशियल जोन बा 1 जुलाई 2025 से शुरू होके 30 जुलाई 2026 तक टर्मिने हुए ना वो लोग के चाहिए अपन आमदनी डिक्लेयर करके अगर वो लोग के टैक्स वो नहीं पे ये करे के बाद चाहे ना अपन इनकम टैक्स भरे के
1: जरूर तो जैसे सुनत हवा इनकम टैक्स के जो प्रक्रिया है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होवेला अभी हमने के श्री जगी सर जी बतावत हवन के चाहे ना भरे के इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स बा और साथ में जे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हव जा जे लोग के अपन एगो कारोबार बा एगो बिजनेस बा आपके भी चाहेला ई फॉर्म भरे के भले ही आपके कोनो टैक्स नहीं परिपेय करे के फिर भी जो आपके इनकम बा आपके चाहे दिखलाए करे के और अभी हमने बातचीत कर थे जा इनकम टैक्स के फाइलिंग पर 2026 के जो फाइलिंग सीजन चला था उकर पर और हमने संगे हवन MRA के टेक्निकल अफसर श्री लेखराम जगे सर जी और इस विषय पर हमने थोड़ा देर में चर्चा आगे बढ़ावा जा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने इनकम टैक्स रिटर्न पर बातचीत करत है जा, देखत है जा कि के चाहेला भरे के इनकम टैक्स के फॉर्म कैसे चाहे भरे के, और फिर जोन जोन जानकारी जरूरी बा आपके इनकम टैक्स से संबंधित, इस सब पर आज हमने के जवाब देवत हवन श्री लेखराम जगेसर जी, जे एमओआरए के एगो टेक्निकल अफसर हवन। त जगेसर जी, हमने के ई बोला कि अभी हम बोलत रही कि 15 अक्टूबर चाहे भर देवे के, थोड़ा हमने के जस्ती जानकारी द, कहे कि बुझाला जेके इनकम टैक्स भर पे करे के बा ओके, अगर डेडलाइन थोड़ा अलग है जेके नहीं भरे के बा, थोड़ा हमने के एकर बारे में बोला।
1: जैसे बोला इनकम टैक्स रिटर्न के डेडलाइन है गुरुवार 15 अक्टूबर 2026, फिर से बोला था 15 अक्टूबर 2026 हमने के डेडलाइन है, ये लालवा में प्रेसक्राइब करा okay. और हमने सब कोई से मांग करते हैं कि हाई डेडलाइन वाले अपन फॉर्म भर दिया
0: जी।
1: और एगो मांगो करते हैं जमे कि तो हर फॉर्म डेडलाइन के आगे वैसे सबमिट कर दिया, जमे जे जे जे

0: कोनो प्रॉब्लम रही था सकब सा एडे करे
1: डेडलाइन से अगते
0: हां जे डेडलाइन पर सबमिट कर ले हवा कुछ प्रॉब्लम हो गया तब प्रॉब्लम हुई हमनी के जे ऑफिस आवर्स के बाद अपन रिटर्न सबमिट कर ले और प्रॉब्लम रही तब

0: der har man ikke lagt man har 10.000 rupier. 10.000 rupier op til maksimum, nej ikke maksimum, 5.000 rupier. Plus, John tax bar og kører på 1% penalité, og 0.25% l'intérêt har man ikke, job tak har taxen ikke kører. Or, John business au car chiffre d'affaires 10 millions c'est comme tiba au logo que la man ha 2000 roupies or maximum 5000 roupies pareil je sais bolli ha 1% au car penalty late payment or 0.25% l'intérêt job le tax one pay holba or to har chiffre d'affaires 10 millions c'est justiba to au car la man justiha ou la man wa 2000 roupies c'est ok 10000 roupies le ka 20000 roupies le ka wala. Or, tu as pénalité, John Ballet paiement, 1% c'est 2.5% rahe là, or l'intérêt 0.25%. Tu as dit que tu as dit l'intérêt de la pénalité, et que tu as dit que tu as return time pour le temps. Tu as dit que tu
1: as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que एगो समय अवेला लाने फिनांसिया समाप्त होवेला त ईडीएफ फॉर्म भी हमनी के चाहना भरे के वो भी ऑनलाइन ही है अब और एकर तुरंते बाद इनकम टैक्स भी ढेर कोई ई दोनों के बीच नहीं सकेला जा फर्क करे या फिर एगो कंफ्यूजन भी रहेला त हमनी के थोड़ा बोला ईडीएफ का है इनकम टैक्स का है और ई दोनों के कौन रोल है
0: जैसे बोला कि ईडीएफ नॉर्मली हमनी उठ में जब फाइनेंस एक्ट होते हो जाला तब ईडीएफ आवेला मैं ईडीएफ पर एक बार बोला ईडीएफ ओकर डिटेल में नहीं जाता है ईडीएफ ग्रोसो मोडो बोला था ईडीएफ हम नी अपन एम्प्लॉयर के सुमित करी ला जा
1: हां
0: जब मैं की एम्प्लॉयर वा देखी कौन टैक्स चाहिए कटाई के हर महीना के ईडीएफ से तू एम्प्लॉयर लोग के है
1: जी
0: ओके और हाउ ईडीएफ फॉर मो में सब अपन डिडक्शन बोल ब तब एम्प्लॉयर वा जानिला
1: ओकर हिसाब से
0: कितना कटाई
1: काटे के चाहिए पे एज यू अर्न
0: पे एज यू अर्न और हमने एमओए के वेबसाइट से वो ईडीएफ वहां सबमिट करें से मैं इम्पोर्टेंट है जाने के एमओए खाली को फैसिलिटी डाल ले बा जब मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर सकें सा एम्प्लॉयर वा रिट्रीव करे के जो इंफॉर्मेशन वहां डाल ले हुआ और एम्प्लॉयर वा अपन ईडीएफ सबमिट करे के जब मैं कागज के जरूरी नहीं सब इलेक्ट्रॉनिक हो जाए और इनकम टैक्स रिटर्न हमने सबमिट कर दिया था जहाँ पर हमने के लाने फिनांशियर जैसे बोली आगे में 1 जुलाई 2025 से शुरू हो गया और 30 जुलाई 2026 लेक टर्मिने हो गया ऊपर हमने अपन आमदनी के डिक्लेयर किया पर कौन ईडीएफ जो हम बोले हुआ वो लाने फिनांशियर 1 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 लेक जाए जमें तो हर जो आमदनी मिला था वो एम्प्लॉयर हुआ जानी कौन सी काटे के
1: जरूर तो अभी जब इनकम टैक्स और ईडीएफ के स्पष्टीकरण आप दे दिला तो एगो दूसरा सवाल ई बा कि जब जाते जा ऑनलाइन ई फॉर्म भरे इनकम टैक्स के तो देखते जा कि तीन गो टाइप तीन गो किस्म के रिटर्न्स बा थोड़ा ई तीन गो जन किस्म के रिटर्न्स बा ओकर पर हमने के थोड़ा जानकारी दा
0: हाँ देख बा जब अपन रिटर्न भरत हुआ जो लोग नहीं भर ले जब जाए बस अब एमओए के वेबसाइट में देख बजा कि तीन प्रकार के रिटर्न बा एगो बली ला सा स्टैंडर्ड रिटर्न दूसरा है प्रिसेप्टिव टैक्स रिटर्न एगो बा सिंपलीफाइड टैक्स रिटर्न तो पहल का मैं आवत है स्टैंडर्ड टैक्स रिटर्न है रिटर्न वा के चाहिए ला भरे के वो लोग जेके लोग के आमदनी यानी कि रेवेन्यू एक साल से में 500,000 से अधिक बा और जे लोग के बिजनेस के ग्रॉस इनकम जो आगे में बोल लीजिए 2 मिलियन से अधिक बा और जे लोग के POI जैसे बोली है अभी ये बोली सा POI कटाल बा TDS कटाल बा और जे लोग के चार्जेबल इनकम बा ना कि ये लोग के टैक्स पे करेगा वो लोग स्टैंडर्ड टैक्स रिटर्न भरियन सा सेवा है रिटर्न भरे के आगे ढेर नोट्स बा है वेबसाइट में ढेर इंफॉर्मेशन बा सब बा जब भरे तब अपन रिटर्न भरे के और दूसरा का है प्रिसेप्टिव टैक्स रिटर्न ये रिटर्न वा ओ लोग के है जो पेचित है मॉयन एंटरप्राइज हो वन जा और सेफ एम्प्लॉयड वो वा वन सा ये लोग 1% टैक्स पे करे लोन करे लन सा लेकिन अपन टर्नओवर में यानी कि ओ लोग के शिफ्ट डाफेयर में और है रिटर्न वा भरे के ओकर कंडीशन है ना कि आप जाइबा अपन रिटर्न भरबा बोलबा हम साल ये हैं जाता है

0: भरे नहीं ऐसे नहीं हुई वो कर पहुंचीशु हाँ ग्रॉस मोडे बोल वाई पहुंचू हाँ वो लोग के ग्रॉस इनकम चाहे ना 10 मिलियन से अधिक वो लोग के रेवेन्यू दूसर सोर्स से यानी कि दूसर रेवेन्यू 400 मिल से इन्हें चाहे ना डिपासी करे के और ओके चाहे ना सेटेन एक्टिविटी में रहे के एगो एग्जाम्पल देता है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग होलसेल ऑफ गुड्स है सब पहुंचू हाँ डेजा लिखाल बा ओके और तीसरा का है सिंप्लीफाइड रिटर्न वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड के है ये रिटर्न जहाँ बोल रही जहाँ वो लोग के चाहे भरे के इमें टैक्स नहीं बाप है ये करके सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होन सा है रिटर्न वहाँ जब बोला था सेल्फ एम्प्लॉयड से कौन से नहीं होन सा या फिर स्टैंडर्ड टैक्स रिटर्न या प्रिसेप्टिव जैसे बोली आगे में उपते कर कौन रिटर्न भरे के और यही में जो सिंप्लीफाइड बा यही में और कौन बा ग्रॉस इनकम नहीं चाहे ला 2 मिलियन से
1: डिपासे करे के
0: कम नहीं चाहे ना कमती रहे के और उकर नेट इनकम चाहे ना 600 मिल से कमती रहे के
1: अच्छा तो इस सब जानकारी जो हमने के आज लेकर आम जगह सर जी देवत हवन बहुत ज़रूरी बा सब कोई के जाने के अभी आप 3 किस्म के जो रिटर्न्स बा ओकर बारे में बोला और थोड़ा देरी में अभी थोड़ा घरी में हमने जाने चाहब जा कि जब हमने ये बरिस अपन फॉर्म भरत है जा तो जो टैक्स रेट बा जो ये बरिस अप्लीके हुआ था ढेर सौजमा वाल बा ढेर बदलाव वाल बा तो एक पर थोड़ा घरी में हमने बातचीत करब जा कि कौन रेट पर चाहिए हमने के ये बरिस इनकम टैक्स भरे के एक से आगे ले अब जा एगो छोटा सा ब्रेक

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। हमने ये बरिस के जो इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न बा ऊपर बात कर रहे थे जा, और हमने संगे हवन इनकम टैक्स से जुड़ल एमओआरए के एगो टेक्निकल अफसर श्री लेखराम जगे सर जी। हमने जो जानकारी हमी के दिले आवत हवा, हमें रुकल रही जा ये जाने खातिर कि ये बरिस जो रेट बा इनकम टैक्स रेट वो कहाँ तक बा, कैसे चाहे डिडक्शन करे के, थोड़ा हमने के एकर पर स्पष्टीकरण दा।
1: जैसे ब्रेक के आगे बोल रहे हुए टैक्स पर बात कर रहे सर, इस साल हमने के टैक्स के तीन गो प्रकार के बा, 0% 10% और 20% है। एगो स्टैंड जैसे ब्रेक से पहले बोल दिया था तीन प्रकार के रिटर्न बा, तब ओकर डिटेल देवत है। अगर आप एगो स्टैंडर्ड टैक्स रिटर्न जो जानकारी देली सा आगे में भरत हुआ, तो हर इनकम 100,000 चार्जेबल इनकम 100,000 से तोहर इनकम 100,000 से कम थी बा, वो 0% आई, तब तुम्हारा 100,000 जब डरबा था 0% से मिचुए करबा तब 0 आए, माने कि जितू टैक्स नहीं पर करे करबा। और क्वेश्चन 100,000 रही था 10% पर और ओकर से जस्ती तब 20% पर आओ, या नहीं कि जे 100,000 परसेंट 100,000 से जब बोला था 20% ना कि डायरेक्ट 20% पर आई, पहले 10% आई तब परसेंट 100,000 परसेंट जो 100,000 से अधिक बा तब 20% पर आई। और ये प्रिसेप्टिव पर बोल ले रही जा ओकर रेट है 8% ओकर शिफ्ट दाफिया में, और जे लोग सिंप्लीफाइड रिटर्न भरे लन सा हिया जितू टैक्स नहीं पे ये करियन सा। ओके
0: हाँ, और जब ये सब रेट बोला था ता एगो व्यक्ति के मतलब कि जब आप अपन डिडक्शन डाला था तब के सकबा कर में एंक्लियर करे के कर पर डिडक्शन सकबा करे।
1: यहाँ पर डिडक्शन डेजा लालिस्वा बा एमओआरए के वेबसाइट पर सब देता है बाऊ में
0: जी।
1: डिडक्शन मिलेला डिपेंडेंस लोग के, लड़का लोग के या कि स्पाउस
0: जो। हाँ, तो डिपेंडेंट में के आवेला?
1: डिपेंडेंट में आवेला तो हर लड़का लोग, पहला हर डिपेंडेंट ओके से बोले या पति या पत्नी यानी कि स्पाउस एक साल में, और ओकर इनकम 110,000 रुपये से 110,000 रुपये एक साल के हो जो नानी फिनेंशियल बोल ली है सर, ओकर से कमती चाहे मिले मिले के, यानी कि मान लो जा कि हम काम करत है अपन पत्नी जो

0: घर पर बा लेकिन ओकर थोड़ा सा बहुत टाइम इनकम मिलेगा 120,000 रुपी से ज्यादा ओके नहीं सकब साले वे इंडिपेंडेंट ओकर इनकम चाहेला 120,000 या कि जीरो। और लड़का लोग जो 18 नहीं होल बा यहाँ पोता हाँ जो बोला था लड़का लोग जो 18 नहीं होल बा तो यहाँ बोल बा कि तोर लड़का के 18 हो गल बा यूनिवर्सिटी पर आवत है एकर पर या तोर लड़का जिसके 18 हो गल बा और वो फुल टाइम एजुकेशन या कोर्स करत हो फुल टाइम बोला था यहाँ और सकबल वे लड़का लोग जो ओतरमा कपाब बाकर 18 हो गल बा सकेला एगो लड़का बा ओतरमा कपाब लेकिन वो काम नहीं करेला ओकरा सकबा डिपेंडेंट ले
1: जो लड़का के 18 हो गल बा लेकिन वो काम नहीं करता सकबा अकेले वे
0: नहीं सकबा यहाँ पसी लालवा स्पष्ट बा जैसे बोली है जो लड़का फुल टाइम एजुकेशन जैसे एगो एग्जाम दे बताए एगो आदमी के लड़का यूनिवर्सिटी पर ओके सकी डिपेंडेंट ले क्योंकि वो फुल टाइम एजुकेशन करता है या कोनो कोर्स करता है फुल टाइम
1: जी।
0: दूसरा डिडक्शन है लेते हाउसिंग लोन पर यहाँ पर भी कोचों बा जैसे बोले हैं जब है लेते वह क्लेम करबा तो हर रिटर्न में चाहे पहरे के कौन से निकाल बा है नोट्सवा में ढेर बाकर रेफरेंसिंग सब बा है वेबसाइट में सकबा ओकर नोट्स पहरे दो तीन गो कोचों है बोल बताए हर लोन वहाँ फिक्स चार्ज पर चाहेला रह के न कि एगो पर्सनल ले लोन ले हुआ घर बनावत हुआ पर्सनल लोन वहाँ से नहीं सक पा दे जुआ करे फिक्स चार्ज वाने एक बार लिए हाँ फिक्स इपोतेक रहेला और ओके नहीं चाहेला एगो दूसर घर बा नहीं कि एक के घर पर हाँ दूसर प्रॉपर्टी एक वहाँ जो नहीं रही और ओकर रेवेन्यू टोटल डिविडेंड से सब मिला के 4 मिलियन नहीं चाहेला डिपासे करे के Okay. और जे लोग देजा हाउसिंग बेनिफिट मिलल बा 2011 से वो लोग नहीं सकें सा है देपासे करे
1: ठीक बा
0: एगो चीज बोला भी यहाँ जो उनके लेंटेरे मिलल बा माना कि एगो पति और पत्नी जॉइंट लोन ले ले वन सा सकें सा है लोन वा स्वाजी का स्वाजरे करे के है लेंटेरे वा क्लेम करी उकर रिटर्न में या कि आधा आधा यहाँ बोल रहे थे आधा आधा 50% सक बस पोताजे करें और डिपेंडेंट चाइल्ड के ताले आवा तेने सुन बोले पर खाली एक गो इस पास सकिना अपन रिटर्न में क्लेम करें
1: जरूर।
0: और तीसर का डिडक्शन है मेडिकल अभी देख बहुत लोग मेडिकल इंश्योरेंस से वेलन सा
1: जी
0: ये लोग सकें सा क्लेम करें एकर मोटा है सेल्फ जेकर अपन देवत हुआ तो 25,000 दिख बा यहाँ बहुत केशों मिले हैं हमनी के माना जा कि हम एगो लासिकोंस में जिकाल ले रहे हैं आप अपने 40,000 रुपी पे ये करते हैं से मैं है रिटर्न हुआ मैं जब तो हर डिटाइल डल बा 40,000 से मैं उकर लिमिट है 25,000 इन आलवा है तो पहला जो सेल्फ बा 25,000 है तो हर पहला डिपेंडेंट के 25,000 दूसरा डिपेंडेंट के 20,000 तीसर का डिपेंडेंट के 20,000 और चौथा डिपेंडेंट बा जो मैक्सिमम बा 20,000 जो आदमी हिया और ही चाहे बोले के जो आदमी के टैक्स पेयर लोग के वो लोग के एम्प्लॉये कॉन्ट्रीब्यू करे रन सा वो लोग के मेडिकल इंश्योरेंस में जैसे एक एग्जाम्पल हम हमारे एम्प्लॉयर जिसों 75% पेये करता है हम 25% पेये करते हैं हम खाली सका भाई 25% वहाँ जो पेये करते हैं ओकरा क्लेम करेंगे। दूसर प्रॉब्लम हो ना कोने कंपनी लोग अपन एम्प्लॉयर के फुल मेडिकल पेये करे ना सा ये लोग नहीं सकें सा क्लेम करें क्योंकि एम्प्लॉयर हुआ डेजा पेये करता है ओके। चौथा डिडक्शन है जो पारों के लड़का लोग यूनिवर्सिटी जालन सा वो लोग सकियन सा 600,000 एडिशनल डिडक्शन क्लेम करे ओके। हियों ओकर कोजिशों बा है कुआ चाहे फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो के
1: फिनों से बोला
0: नहीं पट्टा पॉट टाइम नहीं
1: जी
0: फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अभी पोस्ट ग्रेजुएट वो दलागल बाई में और तोहर एनुअल फीस जैसे बोल बा हमारे लड़का यूनिवर्सिटी मोगरी जाता है तो एनुअल फीस चाहे 34,800 से जस्ती हो के
1: अगर से कमती रही था
0: नहीं सकबा
1: ऐसा बदल जुआ करे
0: नहीं। और
1: जे लड़का विदेश जाए
0: नहीं तो ओकर यूनिवर्सिटी पे यहाँ है ना
1: हाँ
0: जे तुम्हारा स्कॉलरशिप मिल

0: गलता जिन्हें भी ये गलत हुआ तो नहीं सकबा क्लेम करे। अच्छा। लेकिन वो लड़का के सकबा डिपेंडेंट ले।
1: अच्छा। और अभी इनकम टैक्स के फॉर्म के जन क्रम बा ओकर हिसाब से जाते जा तो देखत है जा कि एगो ऐसन भी एगो जगह बा एगो सेक्शन बा जहाँ पर बेड रिडन नेक्स्ट ऑफ किन ई लिखल बा एकर का मतलब है
0: ई बेड रिटन नेक्स्ट ऑफ किन एगो डेजिक्शन हाँ अगर एगो इंडिविजुअल के पारों यहाँ चाहिए जाने के निमन से हैं एगो इंडिविजुअल के पारों ना कि हम अपन पिताजी या माताजी के डायरेक्ट जब है रिटर्न वहाँ में ओकर नाम भरे नहीं हुई तो आवब ओकर पूंजियों पर
1: हाँ।
0: अगर इंडिविजुअल के पारों ग्रैंड पारों भाई बहन या फिर ओकर पति या पत्नी के भाई बहन बेड रिडन हवन सा बेड रिडन बोला जाए एगो आदमी के जो ओके केयरर्स अलाउंस मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी से और ऊ सकी ओकरा डिपेंडेंट ले है फोमुआ में देखबा जा जब फोमुआ भरत हुआ सा एम ओके देजा जाने लाख को आदमी के देजा का केयरर्स अलाउंस मिलता
1: है जी हाँ
0: ओके हाँ। और देखबा जा माना जी एक घर में दुगो भाई हवन सा एक ही के सक्यन सा ले
1: हाँ उलो की चाहे एक
0: डिसीजन का ले सहमति हो जाए जब मैं देखें सा के है डिपेंड वन दोनों क्लेम कर दे वन सा तो एम ओ डेफिनेटली मां क्वेरी करियो के
1: हाँ। और जब ये सब बता दे वत हवा ये सब जानकारी के बाद एक जना अपन फॉर्म ठीक से नहीं भरलक ओकर में कोनो एरिया चल गल तब का हुई बस ये वो तो इलेक्ट्रॉनिक चल गल
0: हाँ जो लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भेजले वन सा संपूसा अभी हमनी के मिला था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एरिया हो गल बा फिनो से सकी अपन टैक्स अकाउंट नंबर या ओकर आईडी से लेके और अपन पासवर्ड डाल के एगो डैशबोर्ड मिलेला
1: हाँ
0: वो फॉर्म सकी एडिट करे तब जो एरिया हो गल बा तब सकी कोरिजे करे
1: तब सकी फिर से भेजे अच्छा
0: हये बोलीला सा जब सुमित करे के आगे एगो फैसिलिटी बा सब बस सेव करे ड्राफ्ट में
1: फिर से एको देख लेवे
0: चेक कर दे फिर जे कोनो इंफॉर्मेशन मिसिंग बा कोनो कागज मिसिंग बा वेरीफाई कर दे आगे तब सबमिट कर दिया और जब सबमिट कर बा चाहे वेरीफाई करके तो हर एक्नॉलेजमेंट आईडी मिलल बा
1: जी हाँ। और कौन कौन बात के चाहे ख्याल रखे के ताकि कोनो एरिया नहीं हुई ई खातिर कौन कौन बात के ख्याल चाहिए रखे के जब ब्रत हुआ चाहिए निमन से देखे के तब कौन सी चाहिए देखे के
0: हाई के आगे मैं एगो बात बोलब एम और एगो फैसिलिटी दे रही बा एगो ओकर देसा ओकर वेबसाइट में चैटबॉट बा माइगा चैटबॉट देख बा जब कोनो क्वेश्चन में सक बा टाइप करें हर वेबसाइट में देख बा अभी हाँ। चैटबॉट बा और दूसरा हम के एगो फैसिलिटी हा ई अपॉइंटमेंट देख बा ई अपॉइंटमेंट बा तो सक बा ई अपॉइंटमेंट हुआ वेबसाइट पर तोहर टाइम डाले के और वो इस लोट टाइम वहाँ पर एगो ऑफिशियल तोहरा सुने करी विया व्हाट्सएप तोहरा चाहिए अपन इंटरनेट रखे के व्हाट्सएप हो रहे के तब तोहरा एडे करे जमे तू पोर्टविस ने चाहे दे गाँव से हो के ट्रैफिक में आए के एम ओ के दफ्तर में आके तोहर रिटर्न भरे के सकबा है सब फैसिलिटी वाले भी और जैसे बोला एगेर एगो कॉन्ट्रीब्यूएबल के बहुत लोग देखे ला जा कॉन्ट्रीब्यूएबल लोग अपन सब रेवेन्यू नहीं डिक्लारे करे लंजा पार्ट टाइम रेवेन्यू की जैसे कि एम ई एस फीस कोनो लोग एम ई एस में वेये करे लंसा हाँ। कि एग्जाम पेपर्स पर एक प्रिपेयर करे लंसा नहीं डिक्लारे करे लंसा बोर्ड फीस या बोर्ड डायरेक्टर्स फीस नहीं डिक्लारे करे लंसा दूसरा है डिपेंडेंट चाइल्ड जैसे डेफिनेशन दे ली सा पेरेंट्स लोग से ये करे लंसा पोताजे करे के नहीं सकब पोता से करे दुआ नहीं है पोता से करे के है लालवा है अब देखबा जे लोग माना कि कोनो कारण जीवो से हो गलो मन से
1: हाँ।
0: सहमति है दोनों पारों से लेके
1: के ले क्लेम करे
0: माना जी ओकर पिताजी क्लेम कर लेना
1: है ना मामा भी कर लेना
0: तब डेफिनेटली मां को एग्री होई
1: तो एक जना के परिगे तू ना करे भरे के
0: हां एम ओरे डिसाइड करे ओकर पाक में डिटेल में नहीं जाते बिकॉज़ सेंसिटिव है इसलिए ने बोला था ही
1: हाँ।
0: से मां चाहिए हाई सब प्रिकॉशन लेके और ये तीसर का हाँ जो नेगेया हुए ना जो अंडर ग्रेजुएट कर कोर्स कर रहे वन सा चाहे इम्पोर्टेंट देखे के फुल टाइम एजुकेशन है और फीस बोले हैं सर 34

0: 1850 हो तो नहीं सक बाले हुए और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट करे थे उनसे यानी जब पोस्ट ग्रेजुएट करे थे ओकर अंडर ग्रेजुएट से आजुते करके पोस्ट ग्रेजुएट डाला था तब जो वो डिपेंडेंट हुआ कि खाली 6 साल तक बाद क्लेम करे
1: और डिपेंडेंट एगो माता पिता के लड़का के धरला 30 बरिस हो गए अब वो मास्टर्स करता तो माँ बाप से के डिडक्ट करे
0: नहीं डिपेंड हुए ना पर कोनो लोग देख बता बीएससी कर दे रहा काम कर रहे हाँ। तब आगे ते कर यंसा तब फिनियो से तब डिफरेंट हाँ। हाँ, चाहे केस पर केस बेसिस देखे के
1: जी
0: ओके और जो कु स्पॉन्सर बाते हयो चाहे ना देखे के जो स्पॉन्सर बने सक जो एडिशनल बोला था यहाँ जो एडिशनल और लोग बा जो प्राइवेट स्कूल जानन सा
1: जी
0: लोग सक बस जैसे प्राइवेट स्कूल देख बता ये एगो डिडक्शन है लेकिन बहुत कॉन्ट्रीब्यूट लोग जो लेकर लड़का लोग गवर्नमेंट कॉलेज जानन सा क्लेम कर दे वेलन सा तो जब पापिये मांगब सा वेरीफाई करब सा तब
1: अपन टैक्स नहीं भरलक जैसे बोल वो नहीं भरलक बाद में भी नहीं भरी का हुई
0: डेफिनेशन एमओए के पास बहुत इन्फॉर्मेशन
1: हाँ वो जान जाए
0: तब तुहरा एगो लेट मिली या ईमेल मिली तब तुहरा चाहिए एमओए आए कि वो में प्रॉब्लम हुई हाँ ये मांग कर ला जा कि तुहर रिटर्न भर दे टाइम में कैंस उक्तब से आगे
1: हाँ और नहीं तोहरा कोनो एगो विकल्प कोनो ऑप्शन नहीं बा नहीं भरे के जिन तोहरा चाहे भरे के एगो कॉन्ट्रीब्यूट हवा तो आपके चाहे हर हाल में ई टैक्स के फॉर्म भर के भेजे के एकर से आप ही के फायदा रही और आप बेवजह झंझट से भी बच जाएगा कहे कि जिन नहीं भरला तो बाद में आके आपके बहुत समस्या
0: जैसे आगे में बोल रही है सर कितना पेनाली थे उम्र जे रिटर्न नहीं भर बता कितना पेनाली थे भाई मैं वही नहीं नहीं बात तो पेनाली थे को लेते करेगी
1: हाँ मैं समय को नियम बा नियम बा कानून बा तो चाहे रिस्पेक्ट करेगी तो जैसे अब सुनत हवा एगो ऐसा विषय पर बात करत है जेकर से लगभग सब कोई एक से संबंधित बा आप सब कोई के चाहे ला जे कॉन्ट्रीब्यूट हवा जा इनकम टैक्स फॉर्म भर के भेजे के और समय बा अभी से 15 अक्टूबर तक आपके चाहे ई भर के भेज देवे के अभी थोड़ा देर में हमने ई प्रोग्राम के ओकर अंतिम चरण पर जाब जा देखब जा कि कैसे चाहे ई इनकम टैक्स पे करे के और कौन कौन समस्या जे खड़ा होई तो कौन चीज आपके चाहे करे के हमने के सवाल के जवाब दियन आज एमओआरए के टेक्निकल अफसर श्री लेखराम जगेसर जी एगो छोटा ब्रेक के बाद ई प्रोग्राम के अंतिम चरण तक पहुँचब जा।

0: आज की चर्चा में हमने इनकम टैक्स पर आज बतेली जा और एकर अंतिम जो चरण बा एकर में हमने श्री जगेसर जी से जानने चाहब जा कि जे लोग के टैक्स पे करे के बा भरला के बाद फॉर्म तो उ लोग किसे सकें सा अपन टैक्स पे करे जे कोई पहला हला पे करे जाता था
1: ई देख बात है जब रिटर्न वहाँ सबमिट करत हुआ तब तोहर दिताई बौके मांगे है पोता हर जाने के हम वही तोहर दिताई बौके नहीं रखी ई वेबसाइट पर डलबा था जब डलबा था दूगो फासों में या डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर आवा बाबी डायरेक्ट डेबिट तोहर इन्फॉर्मेशन बौके डाल देबा था तब सब डेबिट हो जाए डायरेक्ट से मैं एगो मांग कर था यहाँ जब डाल देबा था तोहर इन्फॉर्मेशन एक दो दिन में तोहर अकाउंट वेरीफाई करती है
0: हाँ, जनबा सिया बाकी नहीं।
1: जमे सिया जनबा की तो हर कौन डेबिटे हो गलबा
0: अच्छा
1: न तो बाद में देखबा एगो क्लेम मिल गलबा और चाहना जो मोहता बाप ये करे हा अमाउंट हुआ चाहना अपन कौन में रहेगे और दूसरा है क्रेडिट कार्ड जब भरबा तो दूगो रेडियो बटन बा ये बोलल जा रेडियो बटन सकबा स क्रेडिट कार्ड वो स्वाजी रे करे के और क्रेडिट कार्ड लेकिन लिमिट है 25 मिनट कूबा डायरेक्ट डेबिट पर अकाउंट फ्री है सकबा है सब ले और एक बार बार जो लोग के रिफंड मिला था हाँ। रिफंड वो चाहिए वो लोग के बैंक डिटेल्स देखे डायरेक्ट तो हर अकाउंट में चल जाए अब जब अकाउंट में चल गलता

0: SMS वो मिली कि तोहर अकाउंट खजिते हो गल बा
1: और डेबिट के भी तोहरा एगो इन एगो मैसेज
0: नहीं मिली
1: तोहर वो तोहरा चाहे चेक करे
0: चेक करे के लेकिन वो वेबसाइट पर तोहर एगो एक्नॉलेजमेंट मिली और ये आगे में बोल ले रही है जा एगो एक्नॉलेजमेंट मिली ना तब देख बा सब ठीक से चल गल बा है ये काहे बोली तोहर कौन चाहे भरे के जा जे ओकर अमाउंट नहीं रही था सिया पेनाल्टी मिली
1: अच्छा और फिर अभी ये सब जानकारी देला के बाद जे कोई के कोनो कठिनाई हुई तक लोग का चाहे करेंगे
0: जिके कठिनाई होता जैसे बोली सा ये अपॉइंटमेंट बा ये अपॉइंटमेंट से जब मैं टेलीफोन ही नहीं करेगी ये अपॉइंटमेंट एक नया फैसिलिटी है दो तीन बारी से चला था ए वो परफेक्ट चला था उस लत टाइम पर तो हर अपॉइंटमेंट टाइम भर देबा तो एगो शेष या तो टेलीफोन वही टाइम पर सब ऑटोमेटिक जाना लेकिन तो चाहिए अपन पोता अपन हाथ में रखे के वो टाइम पर एगो जगह में रबा जमा के सो मिनी न तो उस नतवा सोते हो जाए
1: अच्छा
0: और जैसे बोली हाँ चैटबॉट बा और पूरा पूरा वेबसाइट में नोट्स बा और जब जे प्रॉब्लम हो तब देखो से ओके जब चला जा पोते इसमें ऑफिशियल लोग जैसा कस्टमर के बा
1: जरूर
0: एडी कर दिया सब भरे के फॉर्म
1: जरूर बहुत बहुत धन्यवाद जगेसर जी आज आप प्रोग्राम में आइला प्रोग्राम समाप्त हुआ था और अंतिम में जाते जाते आप कौन सलाह देबा
0: है सलाह देबा कि डेंजलियर ने आतान करके अपन फॉर्म भरे के
1: लेकेज ने आतान करा
0: नेतन लेकेज ने आज से अपन फॉर्म भर द जमे दिगवर द आज
1: जिस समस्या होई तो सकबो के समाधान ढूंढ लेवे
0: हां बिल्कुल
1: हां तो बहुत बहुत धन्यवाद जगे सर जी आज आप आइला फजीर फजीर सामदी के दिन और आप जे हमने के सुना था हुआ देखा था हुआ आपके ध्यान खातिर बहुत धन्यवाद आशा करत है जाकि ई जो प्रोग्राम रहल एकर से आपके आपके इनकम टैक्स फॉर्म भरे में आसानी होई आप सब कोई के ई सप्ताहांत के बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद नमस्ते
2: आज की चर्चा Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: ये सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेहरा के साथ आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। आज प्रेस को संबोधित करते हुए फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस एफएमपी के लीडर पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति पर बात की, खासतौर पर जिंदगी की महंगाई, रुपए मुद्रा का घटता भाव और पेट्रोली पैदावारों की कीमतों पर। उन्होंने वर्तमान चुनौतियों पर भी बात की, जिनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नेशनल

0: क्राइम एजेंसी का कयाम शामिल रहा। समुदाय में नौजवानों को कटिबद्ध नागरिक और राजदूत बनाना ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन प्रोग्राम के मकसदों में से एक है। प्रधानमंत्री दफ्तर की पहल पर ग्रेड 8 के 200 छात्र 2 हफ्तों के दौरान प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे। आज कालबासक के रुटनाथ रामफुल कॉलेज में एक पहला सत्र लगाया गया जिसमें वालिदैन ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन दे कंसोमेटर दे लिल मॉरिस असीम सरकार से मांग करता है कि वो पेट्रोली पैदावारों की कीमतों को 2 रुपए से घटाए। संगठन के महासचिव जैन चिलम ने प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगे टैक्स पर जानकारियां दी। उनका कहना है कि चावल आटा और घरेलू गैस तथा बस सब्सिडी के लिए जो टैक्स हैं वो जायज हैं, लेकिन 2 रुपए का टैक्स सरकार की आमदनी में चला जाता है जिससे उसे इतना बड़ा फर्क नहीं होगा। ये ईंधन के कुल 15% टैक्स में सिर्फ 0.69% है। विदेश में G7 ने 100 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है, यानी पेट्रोल और डीजल को जारी करने का दावा किया है। ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आया है, जिन्होंने कहा है कि वे डीजल के निर्यात पर पाबंदी लगाएंगे और इसके चलते G7 के सदस्य देशों ने फौरन ये फैसला लिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: RM3 Radio.

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को भाई संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। श्रोताओं, कल 2 अक्टूबर को दुनिया भर में और खासकर भारत और मॉरिशस में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस ऑब्जर्व किया गया और हमारे यहाँ और भारत में विशेष तौर पर ये गांधी जयंती नाम से प्रचलित है। गांधी जयंती मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन पर पिछले दो दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम विशेष तौर पर उनकी विजिट मॉरिशस में इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपकी ओर से जानना चाहेंगे। सो जो पहला प्रश्न हम आपके सामने रखने वाले हैं और जिसका जवाब आपको देना होगा बाय कॉलिंग ऑन कर सौंदर्य का तो मैं सुसन जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी साउथ अफ्रीका में दो बार गए, उनका आंदोलन वहां पर दो बार हुआ। साउथ अफ्रीका में अपनी राजनीतिक आंदोलन शुरू करने के बाद यानी कि पहले आंदोलन के बाद भारत लौटने के रास्ते पर मॉरिशस में वे 18 दिनों के लिए उन्होंने इस काल किया था, 29 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 1901 तक। आप हमें बताएं, जिस जहाज में गांधी जी सफर कर रहे थे और जिसमें तकनीकी खराबी आने की वजह से उन्हें मजबूर

पुरन पोर्टविस बंदरगाह में रुकना पड़ा। उस जहाज का नाम क्या था? उस जहाज का नाम क्या था? आपका जवाब 4 2 80 70।

गांधी जी की यात्रा मॉरिशस में आज गीत गाथा देश की इस विषय हमने रखा है। मोहनदास करमचंद गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपनी राजनीतिक आंदोलन शुरू करने के बाद भारत लौटने के रास्ते पर मॉरिशस में 18 दिनों के लिए 19 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 1901 तक मॉरिशस में एक यात्रा की थी। आप हमें बताएं जिस जहाज में गांधी जी सफ़र कर रहे थे और जिसमें तकनीकी खराबी आ गई थी और मजबूरन पोर्टिस बंदरगाह में उसे रुकना पड़ा, उस जहाज़ का नाम क्या था? चलें हम इनसे मिलते हैं। हेलो,

0: जय सियाराम भाई जी।
1: जय सियाराम माला जी।
0: जी हाँ, मैं से बोल रही हूँ।
1: माला जी, आप इतिहास में बहुत गहरी रुचि रखती हैं।
0: जी हाँ।
1: सो आपके हिसाब से उस जहाज का नाम क्या था?
0: SS नौशेरा।
1: SS नौशेरा, आपको पता था या आपने?
0: मैंने ढूंढी तो अभी नाम तो भूल गए, पर पता था वो मुझे आई थी।
1: हाँ।

0: 17 नवंबर तक यानी कि 18 दिनों के लिए वे मॉरिशस ठहरे थे। तो आपने सही जवाब दिया महाराज जी, एसएस नौशेरा। एसएस नौशेरा में खराबी आ गई और हमारी किस्मत खुल गई। जय मॉरिशस। हाँ, जय मॉरिशस।
1: जय
0: सियाराम।
1: जय सियाराम।

बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के साथ। जब गांधी जी मॉरिशस में थे तो वे पोर्ट्रीस में एक इवनिंग पार्टी में भाग लिया, ऑर्गेनाइज बाय गुलाम मोहम्मद अजुम। आप हमें बताएं कि पोर्ट्रीस के किस भाग में, किस भाग में उन्होंने उस इवनिंग पार्टी में भाग लिया था।

पाक दिया था ऑर्गेनाइज्ड बाय गुलाम मोहम्मद अजम और वो इवनिंग पार्टी कहां पर लगी थी वो इवनिंग पार्टी लगी थी ताहिर बाग में और उसके बाद वे मॉरीशस के उस समय के गवर्नर जनरल से मिलने भी गए थे रेजुई में थोड़ी देर में आज का हमारा अगला प्रश्न

गीत गाथा देश की गांधी जयंती के उपलक्ष पर आज हमने विषय रखा है द विजिट ऑफ गांधी जी इन मॉरिशस। जब गांधी जी मॉरिशस में थे तब वे पोर्ट लुइस में एक इवनिंग पार्टी में

सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद में आता है। अर्थात ट्रूथ अलोन ट्रियम्स नॉट फॉल्सहुड, थ्रू ट्रूथ द डिवाइन पावर इज स्प्रेड आउट। By this path, sages whose desires are completely fulfilled reach that supreme treasure of truth. Mundak Upanishad. 4:27 आप सुन रहे हैं गीत गाथा देश की, और आज हमने विषय रखा है The Visit of Gandhi Ji in Mauritius. जो अगला प्रश्न से पहले हम मनीता जी को सलाम करना चाहते हैं, जो फ्रांस से हमारा साथ निभा रहे हैं, और उनके पास पहले प्रश्न का सही जवाब था, अर्थात एसएस नौशेरा। शुक्रिया मनीता जी आपके मैसेज के लिए और आपके इंटरेस्ट के लिए इन गीत गाथा देश की। सो जो अगला सवाल है आपके सामने रखने जा रहे हैं, किस बहुभाषी गुजराती लॉयर को गांधी जी ने मॉरीशस आने को आदेश दिया था कि वे मॉरीशस आकर यहाँ पर भारत मूल के लोगों को शिक्षित होने को, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने को प्रोत्साहित करें। उस गुजराती वकील का नाम बताएं बाय कॉलिंग ऑन 400 2020।

0: 4:32 हमने सवाल किया कि किस बहुभाषी गुजराती लॉयर को गांधी जी ने मॉरीशस आने का आदेश दिया और वे मॉरीशस आकर यहां पर भारत मूल के लोगों को शिक्षित होने को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने को प्रोत्साहित किया। चलें हम इनसे मिलते हैं। हेलो,
1: जय मॉरीशस, वंदे मातरम संजय जी
0: जय मॉरीशस, वंदे मातरम। आशा जानू जी, आशा जानू जी,
1: जी बोलिए,
0: आपके पास जवाब क्या है?
1: गांधी जी ने श्री मणिलाल डॉक्टर जी को भेजा था।
0: मणिलाल डॉक्टर जी को भेजा था। आप जानते हैं कि मॉरीशस आने के अलावा वे अन्य अनेक देशों में गए थे जहां पर भारतीय मूल के लोग बसने गए थे, जैसे कि फिजी में भी गए थे। आज बहुत से देशों में अगर भारत मूल के लोगों ने इतनी प्रगति की है तो इसका श्रेय मणिलाल डॉक्टर को जाता है।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उन्होंने जागृत किया हर भारतवासियों को और अनेक मुल्क के लोगों को कि वो और आगे बढ़े अपने देश के प्रति और खुद अपने हित के।
0: और मॉरीशस में उन्होंने एक संस्था के स्थापित होने में अपना योगदान दिया। आप जानते हैं कौन सी संस्था?
1: फिलहाल से ये याद नहीं
0: आ रहा है। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो आर्य समाज।
1: हाँ जी।

0: तो आपने सही फरमाया, आप जानते हैं कि मनीलाल डॉक्टर के नाम पर एक एक सेकेंडरी स्कूल है मॉरिशस में?
1: जी है।
0: और वो कहाँ पर है? लाल माची में।
1: लाल माची जी, लाल माची कभी कभी दिमाग में रहता है।
0: लाल माची में। सो अगर इस समय लाल माची के कोई छात्र और या तो कोई अध्यापक वहाँ पर काम करने वाले या तो कोई सपोर्ट स्टाफ वहाँ पर काम करने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आशा जानू जी। जय मॉरिशस।
1: जय मॉरिशस संजय जी।

गीत गाथा देश की रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आज हमने विषय रखा है द विजिट ऑफ गांधी जी इन मॉरिशस। मनीलाल डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं थे, वो तो वकील थे, गुजरात से आए हुए मनीलाल डॉक्टर। उनका चयन मॉरिशस में, उनको लाना, उनको भेजना अपने आप में एक विचित्र बात है, क्योंकि मनीलाल डॉक्टर बहुभाषी थे, यानी कि उनको फ्रेंच भी आती थी, उनको अंग्रेजी भी आती थी, उनको हिंदी भी आती थी, और भारत के जो प्रांतीय भाषाएं हैं वो भी आती थी। और मनीलाल डॉक्टर अनेक देशों का भ्रमण कर चुके थे, इसलिए वो भली भांति जानते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। और जब मॉरिशस आए गांधी जी से प्रेरित होकर, गांधी जी के आदेश पर, तो यहाँ पर के लोगों को पर उनका प्रभाव बहुत ही गहरा हुआ। और उनके आने के बाद राम खेलावन बुधन जी, पंडित सहदेव जी, डॉक्टर मॉरिस क्यूरे, बासदेव बिसुनदयाल, सुखदेव बिसुनदयाल जैसे महान राजनीतिज्ञ उनसे प्रेरित होकर राजनीति में उतरे। वासुदेव बिसुनदयाल जी तो जब वे भारत में अपनी पढ़ाई करने गए थे, वे तीन बार बापूजी से मिले भारत में, और बापूजी से प्रेरित होकर वे जब मॉरिशस लौटे तो यहाँ पर उन्होंने राजनीति में अपने कदम बढ़ाए। और जब वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हें भी तीन बार जेल जाना पड़ा। सो ऐसे बापूजी प्रेरणा का स्रोत बने। उनके बाद आए मनीलाल डॉक्टर जी, और मनीलाल डॉक्टर जी के बाद आए ये सभी जो नाम हमने आपको सुनाए, और उनमें बेशक आता है नाम सर शिव सागर राम गुलाम जी का।

गीत गाथा देश की, गांधी जी की विजिट इन मॉरिशस, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो पहले गुजराती में आई और उसके बाद इसका अनुवाद इंग्लिश में किया गया। और आज भी जब MGI में जो बच्चे, जो नवयुवक नवयुवतियां, दे टेक डिप्लोमा इन इंडियन फिलोसफी या तो BA इंडियन फिलोसफी में, तो तीसरे साल में एक मॉड्यूल आता है गांधीयन फिलोसफी, और गांधीयन फिलोसफी में जो टेक्स होता है वही यही टेक्स होता है, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। और मुझे भी ये टेक्स करने का सौभाग्य मिला, और इसी के माध्यम से हमें स्वदेशी के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ, सत्याग्रह के बारे में जानने का अवसर मिला, और अनेक ऐसी फिलोसफीज जो गांधी जी ने प्रपोज किया। और इसी पुस्तक के चैप्टर 13 में गांधी ने अपने विजिट मॉरिशस में, अपने विजिट के बारे में लिखा, और उन्होंने ये भी लिखा कि एक रात वे उस समय के गवर्नर जनरल सर चार्ल्स ब्रूस के अतिथि बने थे जब वे 18 दिनों के लिए मॉरिशस में ठहरे थे। हालांकि गांधी जी ने सिर्फ 18 दिन मॉरिशस में गुजारे, ये उनके जीवन में बहुत मायने रखता था, क्योंकि बाद में जब साल 1905 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरु प्रोफेसर गोखले को एक पत्र लिखा, तो उसमें गांधी जी ने अपने गुरु को ये बताया कि अगर दुनिया में एक जगह है जहां पर उनको जाना चाहिए, तो वो जगह थी मॉरिशस। आज पूरे देश में कितनी जगह है, कितनी संस्थाएं हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जिसके प्रांगण में गांधी जी की एक लाइफ साइज प्रतिमा है, जिस पर हर गांधी जयंती के अवसर पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाए जाते हैं, गांधी स्क्वायर इन रिवर जोंपा, गांधी आश्रम, गांधी भवन और सैकड़ों गांधी रोड, जैसे कि संजय दत्त मुन्ना भाई ने कहा था, गांधी रोड पर चलना आसान है लेकिन गांधी जी के बताए हुए उसूलों पर चलना ज्यादा मुश्किल है। चले गांधी जयंती के इस अवसर पर हम ये प्रण लें कि जितना हम उनके उनके नाम के सड़कों पर चलते हैं, उतने ही उनके बताए हुए उसूलों पर चलें। कम से कम चलने की कोशिश करें।

Seklong salbad, saudo sa salbad, ismiti se ahimsa ke pujari Gandhi ji ki khushbu aayegi. और बाद में लोग सोचेंगे पूछेंगे अपने आप से क्या ऐसे भी व्यक्ति इस धरती पर चले थे. प्रोग्राम यहां पर समाप्त होता है. जय मॉरिशस.

सो देवी और सज्जनों, द विजिट ऑफ गांधी जी इन मॉरिशस, ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। अगले शनिवार को एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आपके सेवा में हाजिर होंगे। थोड़ी देर में पूनम जी आपका साथ निभाने आ रही हैं। हमें आज्ञा दीजिए, शुभ सप्ताह सबों को।

0: पुराने नगमे।
1: 5:07 हो चुके हैं। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं पुराने नगमे। दोस्तों, आज गाने भी बेहद खूबसूरत होंगे और उनके पीछे की कहानी भी, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म मेकर की जिन्होंने कभी दीवार जैसी दमदार फिल्म दी तो कभी सिलसिला चांदनी, डर दिल तो पागल है और वीर ज़ारा से प्यार को कहते हैं पर्दे में लेकर आए। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यश चोपड़ा की। तो चलिए, उनके शानदार फिल्मी सफ़र के कुछ पुराने नगमे सुनेंगे, कुछ बातें करेंगे और आपके मैसेजेस और आपके गाने भी लेंगे। पर उससे पहले हम आप सबका स्वागत करते हैं और मैं हूँ आपके साथ इस समय, साथ दे रही हूँ पूनम।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:13 हो चुके हैं दोस्तों और हम कहानी सुना रहे हैं आज आपको यश चोपड़ा जी की। जी हाँ, उनका जन्म हुआ 27 सितंबर 1932 को लाहौर में। उनके पिता जो थे एक अकाउंटेंट थे, उनकी माँ तो घर संभालती थी। उस ज़माने में तो शायद सभी घर ही संभाला करती थी और बाहर नहीं जाते थे। पर यश जी बड़े परिवार से थे और उनमें छोटे बच्चों में से एक थे और उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था बी आर चोपड़ा। आगे चलकर हिंदी सिनेमा के बड़े फिल्म मेकर बने। पार्टीशन के बाद परिवार भारत आया। यश जी ने जलंधर से द्वाबा कॉलेज से पढ़ाई शुरुआत की इंजीनियरिंग की, पर उनका दिल तो अटका हुआ था बस फिल्मों में और वो चले आए मुंबई नगरी।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:18 हो चुके हैं दोस्तों और हम बात कर रहे हैं आज यश चोपड़ा जी की। जी हाँ, उन्होंने पहले फिल्म मेकर थे उनके आईएएस जौहर और फिर अपने बड़े भाई जो कि बीआर चोपड़ा जी के साथ उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। फिर 1959 में उन्हें पहली बार डायरेक्शन की जिम्मेदारी मिली और उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। उन्होंने बनाई मूवी धूल का फूल, इसके बाद धर्मपुत्र, वक्त, इत्तफाक और आदमी और इंसान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। खास बात यह है कि वक्त ने बड़े मल्टी स्टार फैमिली ड्रामा को हिंदी सिनेमा में एक नई पहचान दी, यानी यश जी की तो लग गई लॉटरी। उन्होंने इतने रोमांस को अलग तरीके से दिखाना शुरू किया और उन्होंने एक ही बात हमेशा कही, कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में सुख दुख सब कुछ आता है पर रोमांस नहीं आता, तो मुझे दिखाना है सब पब्लिक को सिर्फ कि रोमांस जिंदगी में किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक कपल अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुली बना सकता है।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:24 हो चुके हैं दोस्तों, और आप सुने हैं पुराने नगमे, और मैं हूँ आपके साथ पूनम। एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर कहते हैं यश चोपड़ा का करियर बिल्कुल लाइन पर आ गया। अपने बड़े भाई बी आर चोपड़ा के साथ उन्होंने उनके बैनर में काम किया, यश राज फिल्म्स में। उनके बैनर की शुरुआती बड़ी फिल्म जो रही वो थी दाग, 1973 में रिलीज़ हुई थी। कभी कभी, काला पत्थर, सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर, दिल तो पागल है और वीर ज़ारा जैसी कई फिल्में, और YRF में जो सबसे हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना वो था यश चोपड़ा जी के सपने की सबसे बड़ी नींव थी। और उसमें जब जुड़ते चले गए ऐसे कलाकार यानी कि अमिताभ बच्चन, रेखा और शाहरुख खान, ये तो उनके शुरुआती दिन थे। अभी तो बातें बहुत सारी हैं, साथ रहिए आरंभी रेडियो मनोरंजन पर।
2: RM3 रेडियो

0: पुराने नगमे।
1: 5:29 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा साहब की। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ उन्होंने बनाई दीवार, त्रिशूल अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ, रेखा के साथ सिलसिला, ऋषि कपूर और श्रीदेवी के साथ चांदनी, अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ फिर से बनाई लमे, और शाहरुख खान के साथ तो बनाई डर दिल तो है पागल, वीर जारा और जब तक है जान। ऐसे कहते हैं कि इतनी सारी जनरेशन के साथ काम करते करते यश चोपड़ा साहब को और बी आर चोपड़ा साहब को ये तो समझ आ गया था कि इंडस्ट्री में दम तो है और यहाँ पर एक्टिंग भी बहुत खूब होने वाली है, तो क्यों ना हम किसी और के साथ भी काम करें। फिर वहाँ पर बात चली साधना की, शर्मिला टैगोर, राखी, जया बच्चन, रेखा, श्रीदेवी, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, प्रीति सिंटा, कैटरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा। कई एक्ट्रेसेस के साथ काम करने के बाद भी उनका दिल हमेशा कहते हैं कि कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस पे ही रहा जिनको बार बार वो प्रमोट करते, यानी कि माधुरी दीक्षित को बहुत बार वो लेकर आए, श्रीदेवी को बहुत बार इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ दी, और कहते हैं जिंदगी उनकी पटरी पर तो आई पर उन्होंने इतने एक्टर्स को एक्टिंग करना सिखाया और कई बार लोगों को एहसास हुआ ये एक्टिंग नहीं कर रहे, ये रियलिटी है।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:37 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं आज यश चोपड़ा साहब की पर्सनल लाइफ की, उनकी ज़िंदगी की, उनके करियर की, उनकी फिल्म इंडस्ट्री में क्या जगह रही। तो 1970 में उन्होंने पामिला सिंह से शादी की, जिन्हें हम पामिला चोपड़ा के नाम से जानते हैं। वो एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन पामिला ने उन्हें सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ, उन्होंने उनके साथ सिंगिंग की, राइटिंग की, क्रिएटिव वर्क किया और यश चोपड़ा का जो बैनर था उसको संभालने में बहुत जगह दी। उनके दो बेटे हुए, आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा। आदित्य आगे चलकर फिल्म मेकर बने, वायर ऑफ के प्रमुख मेन फिल्म मेकर बने, जबकि उदय एक्टर बने और प्रोड्यूसर बने। जबकि उदय को हमेशा यही लगता था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में इतना नहीं आगे बढ़ पाऊँगा जितना मेरे ताया यानी कि बी आर चोपड़ा हैं या मेरे पापा हैं, पर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, फिर भी एक लेगेसी है, क्यों ना मैं ट्राई करता हूँ और देख लीजिए, कहते हैं ना ब्लड में ही होता है। और उन्होंने जिस तरीके से मूवीज़ बनाई और जब बनाई तो क्या मूवीज़ बनी। और ये जो नेक्स्ट गाना है वीर ज़ारा का, तो हम तो यही कहेंगे थैंक यू सो मच आप सभी का साथ देने के लिए, क्योंकि आपके मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं और हम तो कहते हैं हमारे साथ बने रहिए, इंजॉय कीजिए इस प्रोग्राम को।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: पाँच बजकर 44 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं आज यश चोपड़ा जी की फिल्म्स की। तो खूबसूरत गाने ना हो उनकी फिल्म में ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो सिर्फ इंडिया में ही शूट करें, वो हमेशा बाहर देशों में जाते रहे, स्विट्ज़रलैंड, मॉरिशस, चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में भी उनको हमेशा एक ऐसी लोकेशन चाहिए होती थी जहाँ पे मूवी तो बने और साथ में फटाफट से बने 40 डेज में 60 डेज में, और साथ में एक साथ सारे एक्टर साथ रहें और सारा काम बहुत आसानी से हो जाए। और कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से मूवीज़ बनाई और उस तरीके से फटाफट से बनाने के साथ साथ एक्टर्स को भी बहुत एनर्जी मिलती थी क्योंकि सभी साथ हुआ करते थे। इसी तरीके से उन्होंने इतने सारे अवार्ड्स पाए, यश चोपड़ा साहब के नाम इंडियन सिनेमा के साथ इतना सम्मानित हुआ कि इतनी सारी मूवीज़ बनाई उन्होंने। उन्हें 2001 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और उनके अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्हें नेशनल अवार्ड जीते। यश जी ने डायरेक्टर के रूप में ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड्स जिए, उनको वक्त, इत्तेफाक, दाग और दीवार जैसी कई फिल्म्स में बेस्ट डायरेक्टर ऑनर्स भी मिले। और कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे आप फ्रांस के लिए, उनको बहुत ही ऑनर दिया गया, उनको वर्ल्ड के हर कॉर्नर से सम्मान मिला क्योंकि उनके गाने, उनकी मूवीज़, उनकी स्क्रिप्ट, उनकी राइटिंग, उनकी कहानी, हर चीज़ नंबर वन हुआ करती थी। और कहते हैं कि उनका स्टाइल तो हमेशा से ही अलग अंदाज में रहा। तो हम इसीलिए तो आज हमने ये सोचा कि यश चोपड़ा जी का जन्मदिन अभी गया ही है तो क्यों ना उनकी कुछ बात कर ली जाए। तो एंजॉय कीजिए उनकी ही मूवी का एक ब्यूटीफुल सॉन्ग।
2: RM3 रेडियो

0: पुराने नगमे।
1: 5:50 हो चुके हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा साहब की फिल्मी सफ़र। सिनेमा के लिए उनका पैशन अंत तक रहा, जहां पर उन्होंने जब तक है जान जैसी शाहरुख खान के साथ, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा के साथ मूवी डायरेक्ट की। वहीं पर उन्होंने 21 अक्टूबर 2012 को 80 ईयर्स की उम्र में यश चोपड़ा जी का निधन हुआ। फिल्म 13 नवंबर जो उनकी 2012 को रिलीज़ हुई, क्योंकि वो तो गुजर चुके थे, पर उन्होंने कहा कि जो उनकी लास्ट मूवी है वो भी ज़रूर आनी चाहिए, इसे रुकना नहीं चाहिए। 1959 से धूल का फूल मूवी शुरुआत हुई और 2012 तक जब तक है जान तक, यानी कि 50 ईयर्स, 5 दशकों तक एक लंबा सफ़र और शानदार सफ़र रहा। और डायरेक्शनल जो उनकी ज़िंदगी थी, जहाँ पर वो हमेशा एक बात कहते थे, एक ऊपर वाला लिखता है कहानी, एक लिखते हैं हम लोग जो कि मूवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो क्यों ना मैं ऐसी फिल्म की कहानी लिखूं जो अनोखी हो और जो सबको बहुत ही पसंद आए। और ऐसा ही हुआ, जब तक वो ज़िंदगी में रहे उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई। हम तो ये कहेंगे जहाँ पर भी रहें उनकी ज़िंदगी में, जहाँ भी उनकी आत्मा को शांति मिले, खुश रहें। और ये उन्हीं की मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा।
2: RM3 Radio.

5:55 हो चुके हैं और इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ इस प्रोग्राम से, बट उसके बाद आप सुन पाएंगे कहते हैं विस्तार से समाचार और उसके बाद नई सोच।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: नमस्कार रादान, 3 अक्टूबर 2026 की शाम है, 6 बजे हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने महोवाकों में जल स्तर पर चेतावनी जारी की है। कल सिर्फ 36.6% पानी भरा था। आमतौर पर महोवाकों लामारी ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ रोजाना 110 क्यूबिक मीटर पानी की सप्लाई करता है, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर नई पाबंदी। कंसेंट्रिक्स और उसके पूर्व कर्मचारियों के बीच आखिरकार एक समझौते पर रजामंदी। एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है। बैंक ऑफ मॉरिशस देश में जाली नोटों के इस्तेमाल के सिलसिले में चेतावनी जारी कर रहा है। बैंक ने पैसों के नोटों की ऑथेंटिसिटी का निरीक्षण करने और जनता से किसी भी तरह के शक की मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करने की मांग की। और विदेश में G7 नेताओं ने 100 मिलियन पेट्रोल और डीजल के बैरल्स जारी करने का किया ऐलान। नमस्कार और आदाब। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने महोवाकों में जल स्तर पर चेतावनी जारी की। कल सिर्फ 36.6% पानी भरा था। आमतौर पर महोवाकों लामारी ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ रोजाना 110 क्यूबिक मीटर पानी की सप्लाई करता है। आज जलाशय 71,000 क्यूबिक मीटर की आपूर्ति करता है। CWA पानी का जिम्मेदाराना संचालन और इस्तेमाल करने की मांग करता है। जरूरत पड़ने पर नई पाबंदियां जारी की जाएंगी। एक इमरजेंसी प्लान पर काम किया जा रहा है। जोना टेलीविजन में CWA से शाम तानू स्टूडियो में आज लाइव होंगे। कई हफ्तों के बातचीत सत्रों के बाद कंसेंट्रिक्स ने 300 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए एक समझौते पर सहमति जताई।

0: कंसेंट्रिक्स के बंद होने से बीपीओ सेक्टर के भविष्य पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी फिलहाल नई चुनौतियों के मद्देनजर सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दे रही है। बैंक ऑफ मॉरिशस देश में जाली नोटों के इस्तेमाल के सिलसिले में चेतावनी जारी कर रहा है। कागज के नोटों का प्रयोग किया जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने पैसे के इन नोटों की ऑथेंटिसिटी का निरीक्षण करने और आवाम से किसी भी तरह के शक की मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करने की मांग की है। समुदाय में नौजवानों को कटिबद्ध नागरिक और राजदूत बनाना ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन प्रोग्राम के मकसदों में से एक है। प्रधानमंत्री दफ्तर की पहल पर ग्रेड 8 के 200 छात्र 2 हफ्तों के दौरान प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे और आज जोन 1 में कैलबास स्थित रूपनाथ रामफल कॉलेज में माता पिता के लिए एक पहला सत्र लगाया गया।
1: कुछ अभिभावक पहले से ही अपने बच्चों के लिए प्रस्तावित इस अनुभव को लेकर आश्वस्त हैं। करीब 50 अभिभावक कैलबास स्थित रूपनाथ रामफल कॉलेज में एकत्र हुए। ये बैठक नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम के बारे में आयोजित पहले सूचना सत्र के लिए थी। ये उनके लिए ये जानने का अवसर था कि अगले नवंबर महीने में उनके बच्चों के लिए क्या क्या गतिविधियां और अनुभव निर्धारित किए गए हैं। 16 से 20 नवंबर तक प्रतिभागी 4 प्रशिक्षण केंद्रों में सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वे देश के दक्षिण हिस्से में कार्यक्रम के रेजिडेंशियल चरण की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में खेल गतिविधियां, शारीरिक व्यायाम, जल संबंधी गतिविधियां, साथ ही व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित अभ्यास भी शामिल होंगे। ओगोला क्रश कहती है, ये एक मानसिक तैयारी है जिसे अभी से शुरू करना जरूरी होगा। बच्चे आत्मनिर्भर बनना सीखेंगे। अच्छी बात यह है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहयोग दिया जाएगा। उनके साथ टीम लीडर भी होंगे। इस दौरान बच्चे अपनी क्षमताओं को विकसित करेंगे और अपने व्यक्तित्व में सुधार लाएंगे। नरसिंह जयदेव कहते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उनका मार्गदर्शन अच्छे से हो रहा है। मुझे याद है मैं जब 6 कक्षा में थी तब औसलागे में कैंपिंग पर गया था। अभी तक वो पल मुझे याद है। मेरी बेटी भी खुश होगी। फिदुली लोधारी कहती है, मेरा बेटा इसमें भाग ले सका है। ये मात्र 2 या 3 सप्ताह की एक शिक्षा नहीं, जीवन भर ये बच्चों के हित के लिए है। इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे का व्यक्तिगत विकास होगा। कुल मिलाकर ग्रेड 8 के 200 युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य उनमें जिम्मेदारी की भावना, सामुदायिक भावना और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करना है। निरंजन बीगन कहते हैं, इन नौजवानों में स्कूली एम्बेसडर स्कूल के चैंपियन की झलक है। दूसरों को ये प्रेरित कर सकते हैं। ये एक ऐसी पहल है जिसके द्वारा कल भविष्य में ये बच्चे सही कदम उठाने में सक्षम होंगे, अच्छे निर्णय ले सकेंगे, समाज की ओर एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाएंगे। कैलबास के बाद अगले कुछ हफ्तों में 3 अन्य जोन के अभिभावकों के लिए 3 और सूचना सत्र आयोजित किए जाएंगे। नवंबर महीने में शुरू होने वाले कार्यक्रम की ये तैयारी की एक प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम में 200 युवाओं को सीखने, अपनी क्षमताओं को चुनौती देने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वे अपने समुदाय में अपनी जगह बनाने और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे।
0: आज प्रेस को संबोधित करते हुए फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस FMP के लीडर पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद की, खासतौर पर जिंदगी की महंगाई, रुपए मुद्रा का घटता भाव और पिछोली पैदावारों की कीमतों पर। उन्होंने वर्तमान चुनौतियों पर भी बात की, जिनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नेशनल क्राइम एजेंसी का क्याम शामिल रहा। किशन सिथिया की रिपोर्ट पर यह विवरण।
2: प्रेस के समक्ष पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति और जीवन लागत पर बात की। फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के लीडर ने जनवरी से अगस्त 2026 के बीच रुपए के भाव में 4% की गिरावट का उल्लेख किया। ईंधन के हालिया वृद्धि के संबंध में उनका मानना है कि जनता के बेहतर रक्षा के वास्ते हालिया बजट में कुछ फैसलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था।
3: L'essence et diesel. Toute qualité taxe que tu es capable de diminuer ou même retirer. Tellement, nous bien guettons les choses en face. Si diminuer ou retirer sa taxe-là, l'y affecter déficit budgétaire du gouvernement et la dette publique aussi. Mais un garde ça en tête. C'est pourquoi sa question-là n'est qu'il vise à considérer dans le cadre budget de l'État.
2: चर्चा के अन्य मुद्दों में भावी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का तरीका और नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना शामिल हैं। पुल बेगौजी ने जिसके खिलाफ अपनी स्थिति दोहराई, इसकी जगह पर वे एक नेशनल पुलिस सर्विस की स्थापना का प्रस्ताव रख रहे हैं जो पुलिस कमिश्नर की भूमिका को मजबूत कर सके।
0: जून में एक पहले चरण के बाद अब माइटी लर्न ने एक नया मरहला शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर शैक्षिक प्लेटफॉर्म का एक बेहतर वर्जन मुहैया कराया गया। 12 कॉलेजों में ग्रेड 9 के करीब 1200 तलबा यानी छात्र इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन दफ्तर ने 2025-2026 की रिपोर्ट आम की। करीब 200 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में कई ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चों के हक और शिशुओं के अधिकारों के सिलसिले में हैं। ओम्बुड्स पर्सन अनिता गुरा की इच्छा है कि सभी सिफारिशों को अमल में लाया जाए। सिंसिया मुटू करुणा लालू।
2: जुलाई 2025 से जुलाई 2026 के बीच ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के दफ्तर में कुल 363 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 6 रोड्रिक से हैं। 167 मामले स्कूल से जुड़ी समस्याओं के हैं, जिनमें बुलिंग भी शामिल हैं। 63 मामले पारिवारिक समस्याओं से संबंधित हैं, जबकि 11 दिव्यांग बच्चों से जुड़े। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने व्यवहार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे युवाओं का भी जिक्र किया। अनिता घोरा ने कहा, वे बच्चे जिन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, खासकर शेल्टर में और जिन्हें ब्राउन सिक्वाड में भी डाला गया है, उनके लिए उचित ढांचा चाहिए। सड़कों पर अभावग्रस्त बच्चों के साथ काम करने वालों ने आगे आकर बताया कि वे किस तरह के ढांचे चाहते हैं। ओम्बुड्स पर्सन के मुताबिक विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए उचित देखरेख की व्यवस्था आवश्यक है। खास जरूरत वाले 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए कानून में खामी है, उन्हें पता नहीं किधर जाएंगे। 3 साल से कम उम्र के लिए CCA है, 5 से अधिक साल के लिए सेना, लेकिन 3 से 5 साल के लिए पता नहीं कहाँ जाएंगे। अगले वर्ष के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। साइबर हरासमेंट है, इसके ज्यादा से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जहाँ युवा इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। ओम्बुड्स पर्सन दफ्तर चाहता है कि मंत्रालयों और अन्य संस्थानों द्वारा उसकी सिफारिशों को अमल में लाया जाए।
0: सन 2019 से होल्डन सेंस स्कूल खास शिक्षा की ज़रूरत पड़ने वाले बच्चों का समर्थन करता है। कैथोबोन में 2 ऐसी संस्थाएं करीब 100 बच्चों का स्वागत करती हैं और पेसाक से वोकेशनल ट्रेनिंग तक बच्चों का साथ देती हैं। और अब विदेश की खबरें। कीव यूक्रेन में रूस ने एक बड़े पुल पर हमला किया। ये सबसे गंभीर मूलढांचा हमलों में से एक है। आज सुबह सवेरे इस घटना के कारण पुल पर बहुत ट्रैफिक पैदा हो गया। शहर के मेयर ने कहा कि इन हमलों से कीव नष्ट होता जा रहा है। और इसी के साथ पेश हैं कुछ दूसरी खबरें विधि मासीबुरन की रिपोर्ट में।
4: आसमान छूती गैस की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए दुनिया भर की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उठाए गए हालिया कदम के तहत G7 के सदस्य देशों ने शुक्रवार को करोड़ों बैरल डीजल ईंधन और कच्चे तेल को जारी करने पर सहमति जताई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों द्वारा आयोजित G7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोप ने अभी भी अपनी भारी मात्रा में स्टॉक किए गए डीजल तेल को जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, ये प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। G7 के रणनीतिक भंडारों से 100 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल और डीजल की आपूर्ति जारी करने की घोषणा के बाद कच्चे तेल और गैसोलीन की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कमजोर अमरीकी डॉलर और अमरीका तथा ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही वार्ताओं के गतिरोध में फंसे रहने के कारण कच्चे तेल के नुकसान सीमित रहे, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से फिर से नहीं खुल पाया है और वैश्विक तेल आपूर्ति तंग बनी हुई है। एक विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रतीत होते प्रयास में अपने को पायलट द्वारा चाकुओं से हमला किए गए भारतीय फ्लाई दुबई पायलट ने पहली बार अपनी इस विभत्स आपबीती के बारे में बात की है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद

0: मौजूद कैप्टन स्मिथ मच्छर किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रही। इसकी वजह से अन्य यात्री कॉकपिट में प्रवेश कर पाए और सह पायलट को काबू में कर सके, जबकि एक अन्य यात्रा कर रहे पायलट ने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अबू धाबी के अपने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो कॉल के जरिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए स्मिथ मच्छर ने कहा, मुझे कई घाव हो चुके थे, मैं गिर गया था, मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। एक पल के लिए मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं नहीं उठा तो यात्रियों की जान चली जाएगी।
1: और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं और मस्कीरेंस के दक्षिण से दूर एक आंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात बादल घिराएंगे, पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो तथा ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। आज देर रात मौसम में सुधार होगा। कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान दक्षिण पूर्व में बादल घिराएंगे और रह रहकर पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची नहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 5:49 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:08 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी शिव नागिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: सुजी स्ट्रीट वाले पीटो में 75 साल के 75 years old जनाब बशीर अहमद रजब अली, जनाब बशीर अहमद रजब अली जुबाय बशीर के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 7:30 बजे इनके बेटे नदीम रजब अली के घर BK-01 सुजी स्ट्रीट वाले पीटो से उठाकर दफनाने के लिए गिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे at 7:30 PM. Ali Jacques Road, Nouvelle France, mein 78 saal ke 78 years old Shri Lakshmi Prasad Alhoda, Shri Lakshmi Prasad Alhoda, jo Dani Lal Guruji ke naam se zyada jane jate the, ki mrityu ho gayi hain. Arthi kal 1 baje, kal dopahar baad 1 baje, ke bete Amrit Singh Prasad Alhoda ke ghar अली जैक रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. रामकिशन लेन जेबिया रोड गोजबेल में 77 साल की 77 years old श्रीमती सांता कुमारी जिलोल, श्रीमती सांता कुमारी जिलोल जो तारा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10 बजे इनकी बेटी सुबाहा रोशनी के घर रामकिशन लेन जेबिया रोड गोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM. एवेन्यू डालिया बुआ पिन्यू दी तेरूज में 84 साल की 84 years old श्रीमती सरोजिनी रंगासामी, श्रीमती सरोजिनी रंगासामी जो मैडम पायासावो के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10 बजे इनके घर एवेन्यू डालिया बुआ पिन्यू दी तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाली दी प्रेत्र की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM. ओलेगुद नंबर एक वाकवा में 71 साल की 71 years old श्रीमती देविका सिबुरत पैदाशी नाम सुचित जो सुदेवी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनके घर ओलेगुद नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वा मामेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM. ऋषि दयानंद रोड रिविया दे क्रेओल में 72 साल की 72 years old श्रीमती कमला देवी मोंगरा, श्रीमती कमला देवी

मौंगा पैदाइशी नाम बंधन जो शिवरानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है अर्थी कल 11 बजे कल 11 बजे इनके पोते मौंगा कृतिश कुमार के घर ऋषि दयानंद रोड रिविया दिखे

0: से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। रॉयल रूट पिटेरा फ्रेमे 84 साल की 84 years old श्रीमती सत्यवती बंधु। श्रीमती सत्यवती बंधु पैदाइशी नाम बारन, जो सत्यवती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है अर्थी कल एक बजे इनके घर। रॉयल रूट पिटेराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिटेराफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शिमलागो नोटरडाम में 38 साल के 38 years old श्री बिनेश कुमार बसावन। श्री बिनेश कुमार बसावन, जो बेंजोले के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है अर्थी कल साढ़े नौ बजे इनकी माँ बिदेसी माला के घर। शिमलागो नोटरडाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: You're listening to RM3 Radio.

0: टाइम चेक 6:30 हो रहे हैं।
1: नई सो

नई सोच। 6:34 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ। इस समय हम बात करेंगे आज हमारे पेरेंट्स जो कि अब ओल्ड हो चुके हैं और कई बार उनको जाना होता है डॉक्टर्स के पास, कई बार जाना होता है मार्केट में और कई बार सिर्फ उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है हमारे साथ। तो हम सबकी ज़िंदगी इतनी बिजी है तो क्यों ना देखें कि इस बिजी लाइफ में उनके लिए थोड़ा सा समय कैसे निकालें। आज बात इसी पर होगी, जुड़े रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन पर और साथ दे रही है आपके पूनम।

0: आज हम उन पेरेंट्स के लिए बात कर रहे हैं जिनकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो गई है। शायद आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि मम्मी या पापा फ़ोन करते होंगे और हम कहते होंगे अब भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ या करती हूँ। कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है। आजकल का ज़माना इतना फास्ट है, इतना भाग रहा है, पर जैसे ही उनका फ़ोन कॉल आ जाए उसके बाद जैसे ही आपको समय निकले हम तो यही कहेंगे कि आप उन्हें इमीजिएटली कॉल किया कीजिए, उनको मैसेज करके पूछा कीजिए, उनसे कुछ बात कर लिया कीजिए, 5-10 मिनट बस इतना ही पूछ लिया कीजिए कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया, आपने अपनी मेडिसिन ली या नहीं ली। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना आपस में बच्चों का और माँ बाप का, जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी को थोड़ी सी उम्मीद होती है कि जब हमारी एक उम्र होगी तो हमारे बच्चे हमें पूछेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं सबके घरों में ऐसी खुशियाँ ऐसी बनी रहे और ऐसी बॉन्डिंग साथ बनी रहे।
1: RM3 Radio.

0: 6:45 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं नई सोच कार्यक्रम के साथ और इस समय आपका साथ दे रही है पूनम। तो दोस्तों जब कहते हैं ना कि केयर की बात की जाए तो हर किसी बच्चे का तरीका अलग होता है अपने पेरेंट्स का केयर करने का। कई बार क्या होता है कि बच्चे देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं तो हमें इनकी केयर करने के लिए दूसरे देशों में जाना चाहिए, दूसरे सिटी में जाना चाहिए, उनके लिए पैसा कमाना चाहिए और हम उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकें। पर फिर क्या होता है कि वहाँ पर वो बिज़ी हो जाते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं उनकी उम्मीद में ही बैठे रह जाते हैं। और साथ में कईयों का ये केयर होता है कि अपनी ही कंट्री में रहते हैं, अपने ही के साथ रहते हैं पर फिर भी इतनी ज़्यादा ज़रूरतें और हर चीज़ के लिए आजकल के स्ट्रगल के हिसाब से वो थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाती है। तो हम बस इतना ही कहेंगे जहाँ भी रहें बस उनका ख्याल रखें, उनके साथ जुड़े रहिए, कॉल से उनसे मिलते रहिए, उनसे बात करते रहिए। उनकी छोटी छोटी सी परवाह बहुत बड़ी उनके लिए ज़िंदगी के लिए एक तोहफा बन सकती है।
1: RM3 Radio.

0: छः बज के 51 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ और हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पेरेंट्स की उम्र हो जाती है तो उनकी ज़रूरतें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो जैसे अगर आपके बहुत सारे भाई बहन हैं, जैसे दो या तीन भाई बहन हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को बांट लीजिए थोड़ी सी, कि कोई पेरेंट्स के अपॉइंटमेंट देख ले, डॉक्टर के पास लेके जाना है, कोई उनके पास वीकेंड में चला जाए, कोई उनको थोड़ी सी शॉपिंग करा लाए, थोड़ा सा ऐसी घुमा लेकर आ जाए, या कोई ऐसा एक सर्वेंट हो जो उनका ख्याल रख सके। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी ओल्ड एज में प्रेशर नहीं पड़ेगा और साथ में आपको भी लगेगा कि आप एक ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो एक अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि एक दिन तो हमने भी एक उम्र में आना है और जब वो उम्र आएगी तो जब जो चीज़ आप कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ में, सेम टू सेम आपके बच्चे भी वही देखेंगे और वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। बच्चे वही देखते हैं और वही सीखते हैं जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा होता है। तो हम तो यही कहते हैं सबके घरों में खुशियाँ रहे, मोहब्बत रहे, विश्वास और प्यार रहे, और पेरेंट्स को भी एक उम्मीद हो कि हमने इतने साल उनके साथ गुजारे हैं तो थोड़ा सा उनके साथ जीवन और गुजारा जाए प्यार मोहब्बत वाला।
1: RM3 Radio.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज.
4: टाइम चेक, शाम के 7 बज रहे हैं.
5: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
6: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया. उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम. ताली भी बज जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा. चलो.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:08 हो चुके हैं और शनिवार का दिन जब आता है तो सबके दिल थोड़े थोड़े से धड़कने लग जाते हैं, क्योंकि सबका एहसास होता है कि बहुत प्यारे गाने बजते हैं आनंद 3 रेडियो मनोरंजन पर। और इस समय आपके साथ दे रही है पूनम, और मैं तो यही कहूँगी कि अगर कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, या कोई शॉपिंग या कुछ खाने के लिए, डिनर के लिए, तो ये टाइम जो है ना हमारे साथ बिताइए, क्योंकि हम चलाने जाएंगे आपके लिए 60s, 70s, 80s के गाने, और हो सकता है 90s पे भी जंप कर लें, पर आपको हमारे साथ कहते जुड़े रहना है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ इस समय टिकटॉक पे, तो हम लोग लाइव हैं, और उसके साथ में ही इतना ही हम कहेंगे कि आपके लिए ये जो गाने हैं हम स्पेशल लेकर आए हैं, ये गाना आप सबके लिए।
0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना ना

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की
1: आवाज। 7:22 हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त इस समय हमारा साथ दे रहे हैं टिकटॉक पे। और कहते हैं ना, जब सैटरडे आता है तो दिल करता है हर कुछ अपनी मर्जी का करें, कोई टोके ना, कोई रोके ना, और बस हम चलते चलें। इसी तरीके से हम भी यही कहते हैं आपको, कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है, कोई टोकने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस समय सभी चाहते हैं कि उनका नाम बोला जाए। हम तो यही कहेंगे, हमारे साथ रहो। इस समय हमारे साथ दे रही हैं अमिता मोहावीर, रंभा प्रिया, हर्षा यश लिवरपूल से लूसीफर साथ दे रहे हैं। मुगम्बो खुश हुआ, यस बिल्कुल खुश हुआ। साथ में बेबी जेम्स एंड विनीता, याशना ललित जी यूएसए से, और हमारी एक प्यारी सी दोस्त हैं ज्योति लोबिन, शहनाज एंजल, बनी हनी एंड हमीक्षा और सूरज सेबरन सभी साथ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। हम तो ये कहते हैं कि आप सब होते हो तो प्रोग्राम अच्छा चलता है, तो एंजॉय करते रहें गानों को। साथ में एक बहुत ही प्यारा गाना आने वाला है, मुझे ये पता है कि

चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो या न्यू जनरेशन हो, ये गाना सबका फेवरेट होगा। और जिन्होंने कभी नहीं सुना, जैसे कि न्यू जनरेशन में कई लोग होते हैं जिन्होंने ये गाना नहीं सुना, इसको ज़रूर सुनिए, इंजॉय कीजिए। ये गाना आप सबके लिए। RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: कहते हैं जब दिल की आवाज निकलती है और वहां पर गाने चलते हैं आपकी पसंद के, तो मुझे तो अच्छा लगता है आपके पसंद के गाने चलाना। पर अगर इस समय कहीं पर ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, मॉल से वापस आ रहे हैं, या बच्चों के लिए कुछ ख्वाहिश उनकी पूरी कर रहे हैं, कहते हैं उनकी तो ख्वाहिशों की लिस्ट होती है, हमें टॉयज चाहिए, हमें कहीं बाहर कुछ घुमा के ले आओ। और वैसे भी पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, भाई सैटरडे संडे होता किसके लिए, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए तो होता है। हम तो ज़रूर कहेंगे कि आप घूमते लो, बच्चों को घुमाओ, खिलाओ पिलाओ, पर अपने लिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो। एटलीस्ट यहाँ पर ड्राइव करते करते अगर आपके पास टाइम है तो हमारे साथ रहो। आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन आपके साथ है। और अभी इस समय हम टिकटॉक पे हैं और इतने सारे हमारे दोस्त साथ दे रहे हैं और इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, और साथ में मैं तो इस समय तो 62 पीपल जुड़े हुए हैं, साथ में निज़ाम जुड़े हुए हैं, सिया वेनिसन भाई जुड़े हुए हैं, तस्लीमा लेडी जगुआर और जीवन अभिषेक जो कि कॉन्डोस हॉस्पिटल जो है उसकी किचन टीम के हैं, और सारी टीम के सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच, आप बस अच्छा अच्छा खाना बना के हमारे पेशेंट्स को खिलाओ और खुद भी खाओ, और हमें तो बस यही खुशी मिलती है जब हमारे सभी दोस्त साथ जुड़ते हैं। सबरीना साथ दे रही हैं, सुभाष रुद्रास रुदास और श्यामा विशाखा गोविंद एंड श्रिया जनित एंड माला जी, और बहुत बहुत प्यारे प्यारे गानों की फरमाइश चल रही है यहाँ पर। कईयों की तो कंपटीशन लगा हुआ है, पर हम एक एक करके सभी के गाने चलाएंगे। पर आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे, हमारे साथ रहो, इंजॉय करो अपने गानों को। RM3 Radio.

जिनको दिल से ज्यादा प्यार होता है उनके लिए खास गाना, दर्द नहीं तो कुछ भी नहीं, यानी कि दर्द दिल।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और बहुत सारे लोग जो साथ में जुड़ते हैं जिसे कहा जाता है कॉरस दर्दे दिल। क्या बात गाने के अंदर। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे जो साथ में जुड़े हैं इस समय टिकटॉक पे, सभी मुझे लगता है उम्मीद है डांस कर रहे होंगे, और जो अपने घरों में सुन रहे हैं उन्होंने भी सोचा होगा अरे शाम तो बहुत मस्त हो गई। तो हम तो यही कहेंगे, कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं जो इंसान अपने आप को भूल जाता है क्योंकि उन्हें याद नहीं करना होता है खुद को, क्योंकि वो चाहते हैं उनके बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा और पार्ट होते हैं। माँ बाप अपने आप को पीछे कर लेते हैं और बच्चों को आगे कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त जुड़ी हुई हैं, उनका नाम है नीली माँ, और वो अपने बेटे के लिए गाना सुनाना चाहती हैं। हमारी एक दोस्त हैं और

0: वो अपनी बिटिया रानी युतिका के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए गाना सुनाना चाहते हैं, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सुनाना चाहता है, और कोई खुद को भूले बैठा है और कहता है अरे नहीं बस कोई गाना नहीं सुनना, बस कुछ भी चला दो। ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी को जीना चाहिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्यार से आगे बढ़ते जाओ। और हम आपके साथ हैं, RN3 रेडियो मनोरंजन साथ चलेगा आपके, कहीं नहीं जाइए, यहीं पर रहिए हमारे साथ।
1: RM3 Radio.

0: टाइम चेक रात के 8 बज रहे हैं।
1: दिलों की आवाज़ की

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:06 हो चुके हैं, सेकंड आवर लग चुका है और कहते हैं कि जब ये गाना चलता है सलमा आगा जी का, इनकी जो आवाज़ है और साथ में जो ये गाना जिस तरीके से खूबसूरती से इसको पिक्चराइज किया गया था, फ़जा भी है जवां जवां, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर जो भी इस समय कहीं ड्राइव करते हुए सुनते हुए जा रहे हैं तो बस इंजॉय कीजिएगा। और कई लोग हमारे घर पर हैं जो, एक हमारी मैम कह रही हैं कि मैं सिलाई कर रही हूँ और साथ साथ ये गाने सुन रही हूँ और मेरा दिल खुश हो रहा है। मैं तो कहती हूँ आप आराम से सिलाई कीजिए, जो कर रहे हैं काम कीजिए। और हमारे एक बहुत प्यारे से दोस्त हैं, कह रहे हैं मैं खाना खा रहा हूँ और मेरा दिल कर रहा है गाना गाने का और मैं साथ साथ गाना गा रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगी खाना खाते खाते बिल्कुल गाइएगा मत, हाँ पर खाना ख़त्म करने के बाद ज़रूर गाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये जो टाइमिंग है ना सैटरडे का, ये है ही इतना ब्यूटीफुल क्योंकि यहाँ पर जब गाने चलते हैं आपकी पसंद के और थोड़ा सा उसमें तड़का लगा देते हैं हम सब अपने गानों का, तो हम तो यही कहेंगे हमारे साथ रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन। मैं आपका साथ दे रही हूँ इस समय पूनम, और ये गाना नेक्स्ट जाएगा आप सभी दोस्तों के नाम जो कि इस समय हमारे साथ बहुत तो टिकटॉक से जुड़े हुए थे और अभी बहुत सारे जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या कहते हैं हमारे फ़ोन कॉल से और व्हाट्सएप से। तो टिकटॉक तो हमारा बंद हो गया, पर अब आप जुड़ सकते हैं, नंबर आपको पता ही है 4028070 जो कि कॉल का है। और अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजना है तो भेज सकते हैं 5250620 पर।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:19 हो चुके हैं दोस्तों, और हमें पता है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और खुश हो रहे हैं, पर बहुत सारे जुड़े यहाँ पर इसीलिए आए हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चों का या हमारे परिवार का नाम ज़रूर लेना, क्योंकि वो प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो हम भी यही चाहेंगे कि क्यों ना हम आपका नाम लिया जाए। संजीव जी साथ दे रहे हैं USA से, और इस गाने की फरमाइश स्पेशली आपने की थी, और आपका मैसेज हमेशा दिल के बहुत करीब रहता है, थैंक यू सो मच आपका। और नीलिमा जी नोबल फोन से साथ दे रही हैं, बीना जी कथुबोन से साथ दे रही हैं, और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, बिल्कुल चलाएंगे। दिव्यानी जी और दिव्या के लिए नेक्स्ट गाना जाएगा, और इब्राहिम जी जो कि एक बहुत ही प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ और हंसते हुए हमेशा एवरी टाइम कॉल करते हैं और कह रहे हैं मैं शाम को 5 बजे से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सारे गाने बहुत फैंटास्टिक थे, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ देने के लिए। फुलवंती जी जुड़ी हुई हैं, जैसे मेरी माँ है वैसे ही मुझे आपसे प्यार और दुलार मिलता है, थैंक यू सो मच आपके साथ का। और रिहाना जी साथ दे रही हैं पोटली से और इन्जॉय कर रही हैं। सुदेश एन श्याम जी के लिए गाना चलेगा, जेवीना भी साथ दे रही हैं, कृष्णा एन कृष्णी के लिए भी, और सोना और सोना की बिठिया रानी जो कि दिव्या वाकवा से साथ दे रही हैं, प्लीज़ आप सबको हम थैंक यू बोलेंगे दिल से, क्योंकि आप साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने गानों को। तो साथ रहिए हमारे, ये गाना आप सबके लिए।
2: बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा,

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

0: जो कपल्स कई सालों के साथ एक साथ हैं और प्यार जताने के लिए प्लानिंग कहाँ चाहिए, बस साथ में चाय पी लीजिए, थोड़ा सा घूमे आइए, रास्ते में थोड़ी सी बातें कर लीजिए, सैटरडे की इवनिंग बन गई, एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को।
1: आए,

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:35 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं दिलों की आवाज़ के साथ में। ये मैसेज जो आया है ये थोड़ा सा दिल को बड़ा मेरा मतलब मुझे अजीब सा हो गया, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। हमारे एक लिसनर हैं जो कि कहीं ड्राइव कर रहे हैं इस समय और उनके बच्चे दो हैं और जो पीछे गाड़ी में बैठे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ कहीं गए थे और कुछ नोक झोंक हो गई होगी हस्बैंड वाइफ में, देखो वही होता ही है। और बच्चे से पीछे से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग टिकटॉक देख रहे थे और हमने लगा कि इस ये प्रोग्राम चल रहा है तो अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए एक ये बस मैसेज भेज दें कि आप लड़ाई मत कीजिए, आप दोनों फिर वापस प्यार से बात कीजिए, हम तो इतने आराम से आउटिंग पे गए थे, अब आप थोड़ा सा नाराज़ हो गए तो हमारा चेहरा भी उदास हो गया है। तो हम तो यही कहेंगे दोनों गर्ल्स को कि हम बोलेंगे तुम कितनी अच्छी हो, मतलब अपने पापा मम्मी के को पैचअप करवा रहे हो, आप इतने बड़े हो, आई डोंट नो योर एज पर इतना ज़रूर कहूँगी कि यू आर द बेस्ट। ऐसे ही बच्चे होने चाहिए, अपने मम्मी पापा के साथ रहो, गले लग जाओ, प्यार दो और मम्मी पापा आपको तो यही कहेंगे आप आउटिंग पे गए थे तो हंस के मुस्कुराइए, आपके बच्चे इतने प्यारे हैं, क्यूट से हैं और आपको और क्या चाहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और चलिए। और ये गाना आप दोनों के लिए स्पेशली जो आपके बच्चों ने पसंद किया है, एंजॉय कीजिए इस गाने को। और जो भी हमारे लिसनर साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई छोटी मोटी सी नाराजगी हो जाए एक दूसरे से तो माफ़ करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:46 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं दिलों की आवाज़ के साथ और इस समय साथ दे रही है आपकी पूनम। और इस समय बहुत सारे लोग हैं जो हमें मैसेजेस से साथ जुड़े हुए हैं और मैसेजेस में स्पेशली किरणपुरी जी जुड़े हुए हैं वैंकूवर से और साथ में उनके जीजी लाल, नरेंद्र कुमार, नंदी एंड काला राम एंड कारीगर जो कि वैंकूवर कनाडा से हैं और साथ में इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। और कई लोग इस समय कह रहे हैं कि टेरेस पे हैं और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और जब बारिश होती है हल्की सी तब ये गाने बहुत अट्रैक्ट करते हैं और दिल खुश हो जाता है। तो हम तो यही कहते हैं कि आप खुश रहिए क्योंकि सैटरडे आपका है और सैटरडे बनाना जब तभी अच्छा लगता है जब आपके अपने पास हों या आप खुद के साथ अपने साथ जुड़े हों और खुद के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब ये गाने चलते हैं। तो एंजॉय कीजिए गानों को और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ये गाना आप सबके लिए।
0: RM3 रेडियो

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: दोस्तों अब जाने का वक्त आ गया है, आज की रात अभी थोड़ी बाकी है और बस म्यूजिक सुनते रहिए, हंसते रहिए, अपना सैटरडे खूब एंजॉय कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे नई बातों के साथ, नई गानों के साथ। मैं थी आपके साथ पूनम, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।

0: टाइम चेक रात के 9 बज रहे हैं।
1: रत्ना के संगी एमबीसी रेडियो पर
2: भोजपुरी तड़का
3: बजकल बातें और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के बहुत ही प्यार से स्वागत करत हैं। आप सब कोई के साथ देवत हवन रत्ना, बस आशा करब जा कि आप जहां कहूं से भी साथ देवत हो आप सब कोई अच्छा हो। और इस शाम दिगे रात के बिल्कुल भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे बहुत ही प्यार से जुड़ गल हवा त जरूर हमनी के टेलीफोने करे सकबा 4028085 पर अपन पसंदीदा गीत खातिर और 5251700 पर अपन मिसाज तू विदा करे सकवा। तो चला सामदी के रात के बहुत ही मजेदार भोजपुरी गीत संगे सजाओ अब झा और एक गम्मट के डोज जारी रही। तो चला आज के कार्यक्रम के बहुत ही मजेदार गीत के संगे शुरुआत करब जा और आज के पहला गीत मीरा दीनू के आवाज में रखल बहुत ही मजेदार गीत है और है गीत काहे दिलवा लगैल है एल्बम से लेवल गईल। तो चला शुरुआत करब जाए एगो बढ़िया गीत संगे।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:06 हो गल बा। और ये आज के कार्यक्रम संगे हमनी के बहुत प्यार से सब कोई श्रोता लोगन जुड़ गल होन। आई जा पर गौ गोप से सुनीता जी साथ देवत हवन और उनकर प्यारी बहिन विमला जी हमेशा हमनी के साथ देवलन कुंगुमा बगल से। और गौ गोप से हवन अमृता जी और गुडलैंड से हवन वीना जी। काल घूमे अयन सुनीता जी हिया और चार गो बहिन करियन सब बहुते धमार। तो चला धमार करते रहिए। और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आज के है अगला गीत तुम अगले हवन राजा बंधु और हमर आवाज में बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत धन्यवाद। और मजेदार चुटकुला संगे चाचा के का बोला कौन दिन भेटा गल तो हमनी के बोले जाने ला एगो बात हमनी के बहुत समझ में आ गल हुआ। तो हम बोलनी अच्छा कौन बात चाचा बोले हाँ जे हाली हाली बिया करे लंस ओकर जीवन बिगड़ जाला। बोली सच्चे सच्चे बोला था ना चाचा तो तू तो बहुत सोच समझ के कले रलन तो कौन ची होल बोले हाँ हये बोला था ही। और जोन बहुत सोच समझ के शादी करे लन सा ऊ कौन तीर मार देवेला बोलता। देखा तीर नहीं मरिया पर आंख जरूर मरिया चाची के।

भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और रात के 9:11 हो गल बात है चला। आज के कार्यक्रम मजेदार बनावे खातिन जितना लोग हमनी के साथ देवत हवन, जितना लोगों के फरमाइश हमनी के आवत मिला था, सब कोई के गीत चलाओ अब जा, सब कोई के दिल खुश करब जा। और ये अगला गीत जन है गायत्री जी हमनी के साथ देवत हवन नोएल फॉन्स देने से, और अजय संगे हवन उनकर बेटा मामी हवन कल्याणी मोहन मेबक देने से, और उनकर भौजी हवन शकुंतला जी मो ताइलोंग से, और खास सखी गीता बाई जी हमने के हमेशा साथ देते रहे लन नोएल फॉन्स से ही। चलत तलत महमूद और लता जी के आवाज़ के रखल गीत लागी ना ही छूटे, राम है गीत बहुत एक खुशी रहेलन, और हमेशा है गीत के वो मांग करते रहेलन। और जैसे कि जानत हव काल त रहल गांधी जयंती 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन, और हमार पप्पू भैया जब गल लेकोल त अध्यापक जी हाँ गुरु जी पूछे चला बच्चा लोग तनि हमनी के गांधी जयंती के बारे में बताओ, तब पप्पू भैया फट से अपन हाथ ठड़ा करके बोले गुरुजी हम जानी ला गांधी बापू के विषय में, तो बोले शाबाश पप्पू बताओ हमनी के कौन चीज जाने ला, बोले गांधी बापू रहल बिना बाल के एगो गंजा आदमी, और जयंती के रहल है तो नहीं जानत है, बोले अरे बुड़बक जयंती बोले तो ओकर जन्मदिन

0: का। भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:20 होगल बा रात के 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन वाकवा देने से बाय आबू आफे संगे हवन असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर खास संगतिया हवन आपी और उनकर पत्नी और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन चला सुनब जा आतिश बागी गति के आवाज में रखल है अगला गीत जे चचा बहुत भाई आबू बहुत खुश रहेला सुने के छोड़ के मुरीस्वा तो चला मजेदार गीत संगे बढ़िया बढ़िया चुटकुला हमर जोन चचा है ना कबो कबो अच्छा रहेला कबो कबो का जनी कहां से ओकर मन में ऐसा ऐसा शायरी चलावेला नहीं जानेला तनको रोमांचिक शायरी नहीं बोले जानेला ऐसा ऐसा बात कबो कबो पीके कर देवेला चाची के आहो कौन दिन चाची के एगो शायरी शुरू करके बोले बहुत दिल करता तोहरा अपन पलकों पे बिठावे के तो चाची तो शर्मा के ऐसे लड्डू ऐसे का बोला टमाटर जैसे लाल लाल हो गल बोले सच्चे के हो बोले हाँ हमर दिन बहुत चाहता तोहरा अपन पलकों के बिठाई के पर हम अपन दिल के कैसे समझावब तू तो 52 किलो के हवा कैसे बिठावब तोरा अपन पलक पे मोटकी हो गल हवा तू

0: भोजपुरी तड़का
1: ऐसन गीत बजेला त कहां तोरा मन करी मोरिस छोड़ के जाए के हो। ढेर कोई मोरिस से बाहर भी जब चल जाए तो हमेशा हमनी के साथ देते रहे लंस दूसर देश से। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद सब कोई के तो चला है। जा पर अगला गीत जन है बहुत मजेदार गीत और है गीत एगो बहुत खास गीत है और सूरज शर्मा सजादा हमनी के साथ देवत हवन थ्री ओले देने से और उनका दूगो बेटा हवन निशाल और सूरज और सब सजादा परिवार खातिर नहाई अगला गीत के उमांग कर ले हवन और दीपशिका बलोगाम की आवाज़ में रखल हई गीत तो जरूर चलाओ अब जा हई गीत तो हर खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तड़का।
1: सुगा हाय ये बोले कि बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत सुन ल। और है जा पर हमनी के साथ देवा धवन विजय बेनी प्रसाद और शाम मुनि देने से वो हमनी के बहुत प्यार से साथ देवा धवन और संगे हवन धूली परिवार और उनकर एगो बहुत प्यारा मित्र जे हिंदी पाठशाला की गुरुजी हवन और संगे संगे हवन उनकर खास दोस्त मोताबा से शास्त्री बनोमाली और वो खुशी हवन सुने के बाप दादा के बोली विनोद सिवदत्त के आवाज में रखल हई गीत वा चलाओ अब जाओ उनकर खातिन और उनकर सब परिवार लोग खातिन। और हमर चाची चमेली कौन दिन ओकर निमेगोवा जन रहल उ बिलागल आहो दूसर के एगो पोताप लेके कल्लन चचा के टेलीफोन तो चचा त नया निमेगोवा अपन पोताप पे देख के हाली से फटाक से टेलीफोनवा उठा लेलक और फोनवा उठा के बोले हालो तो चाची भी अपन आवाज बदल के तनी बोले हाँ हो शादी तोहर हो गल बाका कि कंवारा हव तो चचा तो अपन आवाज में जितना जवानी के संगे बोले नहीं नहीं अभी तो हमार शादी नहीं होल बा हम जवान है हमार एगो बड़का मकान बा दू गो लोतो बा और हमार महीना के हम 500 मील से जस्ती हम कमाईला मैनेजर है काम में तू के हवा हमनी के बोला था तनी हम करब तोहर संगे शादी बोले हम हाँ तोहर बुढ़िया बोलत रही तोरा से बाजार से तनी आलू लेके आइयो और नमक के पुड़िया लेके आइयो घर में नमक फिनी हो गल बा घरे आइयो तब दिखावब तोरा चार गो लुटो बा कोठी बा 400,000 से भी जस्ती पैसा कमावत हव तोहर धोती ढीला करब अभी रुक

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का, तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:42 और हाइजा पर हमनी के साथ देवा धवन रिहाना फीनिक्स देने से और राधा के सोभेला हाई गीत के उमांग कर ले हवन जितना कोई सुना थवन जितना कोई साथ देवा धवन उन सब कोई खातिन और बहुत प्यार से बस हंसते हंसते मुस्कुराते सब कोई साथ ऐसे देते रहिए जा हमनी के बहुत खुशी लगेला जब कोई हमनी के इतना प्यार से साथ देवेला तो चला हंसते मुस्कुराते सब कोई के दिल खुश कर अब जा अपन पसंदीदा गीत संगे और चला है जा पर मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और ये हमर चाचा कौन दिन बाजार जब गल तो हाउजा पर एगो प्रतियोगिता एगो आदमी धौगले आल ओकर हिया एगो मिखो लेके और ये चाचा के बोले चाचा तोरा मिली एगो कादो जे तू सही उत्तर देब त बोले तोहरा परी एगो सवाल के सही उत्तर देवे के जे तू जीत जाइब तोरा मिली एगो बड़का कादो तो चाचा बोले हाँ हाँ हाँ पूछा पूछा हम देवब जवाब हमनी के कादो चाहिला तो बोले चाचा जी तोहर दूगो ऑप्शन मिली दूगो ऑप्शन में तोरा चाहिला एगो ऑप्शन स्वाजिगे करे के जे तोरा मिली दू गो ऑप्शन लावी में तो तू पहला चीज कौन चीज छोड़ब पहला ऑप्शन है तोहार पत्नी और दूसर ऑप्शन है तो चाचा हाल ही से बोले पहला ऑप्शन बोले अरे चाचा पहला दूसर ऑप्शन तो सुन ल बोले नहीं ऐसा ऑप्शन बार बार नहीं मिलेला हम अपन पत्नी के छोड़ देव
2: कृष्णा के सोभेला।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जहाँ पर हमनी के साथ देवा धवन मानती जी जुड़ गल हवन अल्फोंस देने से और जन्मदिन बाते जन्मदिन रहल भव्य के तो चला अनंती जी आरती जी उर्वशी अनुषा गिरिशा मितिशा भव्य पुष्कल और हितांशु खातिन चलाओ अब जा मांग के सिंदूरवा है गीत हंसते मुस्कुराते सब कोई हमनी के साथ देवा थवा ना और ही चला आगे बढ़ब स और ही हमर चचा चाची के किस्सा तक सुनते चला कौन दिन चाची लगल चचा के तनी बात सुनावे बोले का हो पूरा दिन जब ले देखा तब ले पूरा दिन बैठल रहेलन स है पोताप में है आँखवा खराब हो जाए तोहर तो चाचा बोली हाँ तो कौन चीज करब तो चाची बोले हमनी के भी तनी देख ल हो तो बोले हाँ हमार आँख खराब हो जाए है चली अब तोरा देखब हमार दिमाग खराब हो जाए

जरा हाइये गीत वाकर अब जा फुलवंती जी खातिन वाकवा से साथ देवत हवन संगे हवन उनकर पति देवानंद बेटी हवन भावना बेटा उषन और पूनम खातिन जे भी थोड़ा घड़ी पहला रेडियो मनोरंजन पर हमनी के संगे रह।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला आज जन्मदिन मनावत हवन के ईशा और ही बहुत बहुत प्यार से बधाई देवत हवन पापा हवन विदेश और मामा हवन आशा साथ देवत हवन सब कोई भाई हवन विषय सब राम रतन परिवार की ओर से ईशा को बहुत बहुत प्यार और खास कर चाची ललिता आज इथियोले से हमने के साथ देवत हवन और आज मलाइका गल हवन और सब कुशल परिवार की ओर से और खास कर दीदी सुदेवी साथ हवन दीदी छोटी दादी प्रभावती भाई हरीश भाई आत्माराम और सुखलाल मौसी खातिन और जितना परिवार साथ देवत हवन उन सब को खातिन और खास कर रमेश सिपोल जी भी हमनी के साथ देवत हवन अभी फोन जुसाक से पत्नी कविता संगे आज बेटा आकाश के जन्मदिन बाते और पत्नी पल्लवी बहुत बहुत प्यार से ओकरा बधाई देवत हवन संगे हवन प्रयान दृष्टि अक्षय कविश और सब सिपोल परिवार की ओर से तो चला हमार टीम देने से भी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई बोलब जा।

RM3 Radio.

नीलकंठाय द्योतराय सर्वे स्वराय नमो नमः। ओम यो वेदा ब्रह्मनो वेदा मृदा मृदे तस्मे च ब्रह्मनो ब्रह्मचः नारम्यारित्य विश्वा नारायण नमः। कुंभं दीपं संदर्शयामि सर्वत्र गोविंद नमः।

गुरवे सर्वनो गानाशसे भवनो गिना विदये सर्वविद्याना दक्षिणा मूर्तये नमः। हरिः ओम हरिः ओम ममोपात्य समस्तान् दृशे द्वारा परमेश्वर परमेश्वरे प्रत्यत्तम सुभे सोमोत्तिः अस्त्यानां सहा कुटुंबानं गेमिस्या विजया आयोग्या ऐश्वरा अभियातं धर्मना मोक्षां सदुर्विदं पुरुषातं सिद्ध्यातं अस्याना संबत्ताराम कृष्णा परमात्मने नमः नमः। ओम अखिलांड गौरी ब्रह्मानगानगिये स्वस्ति बजारं परिवायत्यम्

तन्नो रश्मि प्रचोर्यार्य अखिलांडकोरी ब्रह्मानगानगस्यस्तीपचारं परिवायत्यागोता ब्रह्मण्या सुखिनो भवन्तु हरिः ओं हरिः ओं सर्वमां।

दिव्य प्रबंधम नूल तुगते पल पासुर मूल नमक आवारवन भक्ति कल्याण गुण आह

मारिकम्मन सोसाइटी समूह मयम सोशल सेंटर वड़ागत्तिल सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा।